नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग

0: को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: वी नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड चैलेंजेस।
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट थ्रेट्स फॉर अस।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव को 213.67 मीटर अर्थात 1404 किलोहर्ज में हमें आकाशवाणी को गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता यहाँहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप अनि एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार बिहानीको 7:05 भइसकेको छ र अब प्रस्तुत गर्दैछौ सदाबहार हिन्दी चलचित्रका गीतहरूले समेटिएको कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज। कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीजको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण संगीत प्रेमी श्रोताहरूमा अभिवादन तथा स्वागत जनाउँदै प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौं पहिलो गीत 1975 सालमा दर्शक सामु आएको चलचित्र आन्धीबाट रहेको छ। यस चलचित्रका निर्देशक गुलजार थिए भने यस चलचित्रमा मुख्य कलाकारहरू संजीव कुमार, सुचित्रा सेन थिए। श्रोता स्वीकार्नुहोस् यसै चलचित्रबाट गायक किशोर कुमार अनि लता मंगेशकरको सुमधुर स्वरमा रहेको यो गीत।

0: सीमा
1: जी,
0: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा SIR अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
6: गत 30 मईदेखि 28 जून 2026 VLOहरूले घर घरमा गएर इन्युमेरेशन फर्म वितरण अनि संकलन गर्नेछन्।
5: सबै मतदातालाई आफ्नो फोटो सहित फारम राम्ररी भरेर समयमा नै बुझाउने अनुरोध छ।
6: 1 जुलाई 2026 18 वर्ष पुग्ने योग्य मतदाताहरूले पनि फर्म 6 बुझाउन सक्नेछन्।
5: फारम ECINET एप अथवा भोटर पोर्टल मार्फत अनलाइन पनि बुझाउन सकिन्छ।
6: राज्य चुनाव आयोग सिक्किम सरकारद्वारा जनहितमा जारी।
7: हामी आकाशवाणीको बिहानीको प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज। कार्यक्रमलाई अघि बढ़ाउने क्रममा अर्को प्रस्तुति 1966 सालमा दर्शक सामू आएको चलचित्र पत्थर के सनमबाट रहेको छ। यस चलचित्रका निर्देशक राजा नवाते थिए भने यस चलचित्रमा मनोज कुमार, वहीदा रहमान, प्राण अनि मुम ताज जस्ता खप्पिस कलाकारहरूले अभिनय गरेका थिए। श्रोता स्वीकार्नुहोस् यसै चलचित्रबाट गायक मोहम्मद रफीको सुमधुर स्वरमा रहेको यो गीत।

0: श्रोता यतिन्जेल यहाँले सुनिरहनु भएको थियो विविध जानकारी र मनोरञ्जनले भरिएको कार्यक्रम प्रणाम सिक्किम। अब सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट र उत्तर पूर्वी सेवा सिलोङ केन्द्रबाट क्रमैले हिन्दी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमरीका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद

0: साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: वी नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड चैलेंजेस।
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: दे ऑल कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट थ्रेट्स फॉर अस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमरीका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
5: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
6: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरूद्व अभियान की शुरूआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई। सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative, disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threat for us.
8: Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamam bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of 12 Indian nationals in the accident at Ras Laffan Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. During discussions on the situation in West Asia, Prime Minister Modi appreciated Qatar's constructive role in the ongoing peace efforts. India has strongly criticized Pakistani Defense Minister Khwaja Asif's remarks over the situation in Pakistan-occupied Kashmir, saying these remarks are desperate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said, New Delhi categorically rejects these fabricated claims with the contempt they deserve.
9: The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
8: On India-UAE defense partnership, the spokesperson said India's relationship with the UAE in recent several years has seen a major upswing.
9: Our relationship with United Arab Emirates several years has actually seen a major upswing. In that upswing, the defense partnership also plays an important role. That also has strengthened and deepened. So that is where we are in our defense partnership with UAE.
8: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has called for stronger multilateral cooperation to build resilient economies, accelerate sustainable development, and ensure inclusive growth. Addressing the Global Convergence for Growth Summit virtually in New Delhi yesterday, she said that while prosperity and challenges are shared in an interconnected world, the consequences of conflicts and uncertainty fall disproportionately on developing countries and the Global South. Ms. Sitharaman stressed that coordinated global action is essential to address these challenges. Highlighting India's economic progress, the finance minister said the country's growth is primarily driven by domestic demand, supported by a largely market-determined exchange rate. She added that India continues to be among the world's fastest-growing major economies, with GDP growth projected to remain robust at around 7% over the medium term. The summit was chaired by French President Emmanuel Macron. Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, has said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. He said this while releasing the latest edition of the Trade Watch Quarterly Report in New Delhi. Dr. Lahiri added that India's exports reached $1.84 trillion and imports grew by 6.5% in the last quarter. Talking about the situation in West Asia, Dr. Lahiri said that the crisis was temporary and expressed hope that soon peace will prevail in the world.
10: It was a short-term problem. I hope the war is going to end, peace will prevail, and the impact was in terms of energy prices and transportation cost. Freight rates went up. There was disruption. You'll find even in these figures somewhere, prices went up, but quantities were not available, so there was a problem. I think it was a temporary supply shock.
8: India's critical mineral mission has gained significant momentum with the successful auction of 56 critical and strategic mineral blocks and 11 exploration license blocks by the Ministry of Mines. The Ministry has successfully auctioned 10 critical and strategic mineral blocks under the 7th tranche of auctions, taking the total number of such blocks auctioned to 56 out of 88 blocks offered so far, with a success rate of over 63%. The Ministry informed that for the first time, critical mineral blocks in Gujarat, Uttarakhand and Telangana were auctioned by the centre. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. India and the United States opened high-level trade talks in New Delhi to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in U.S. tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met United States Trade Representative Jamison Greer and U.S. Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi yesterday. More from our correspondent.
11: Both sides are aiming to conclude an interim trade pact before 24th July when Washington's temporary 10% tariff on imports from trading partners is set to expire. On February 20, the U.S. Supreme Court struck down sweeping tariffs. This led the U.S. administration to impose a temporary 10% tariff under Section 122 of the Trade Act on all countries for 150 days starting February 24, which is due to expire on July 24. Following a de-escalation in bilateral trade tensions, the U.S. reduced the reciprocal tariff on most Indian goods to 18% and removed a previous 25% penalty tariff. India had proposed reducing or eliminating tariffs on a range of U.S. industrial and agricultural goods, including dried distillers' grains, red sorghum for animal feed, tree nuts, fruits, soybean, oil, wine and spirits, among others. Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
8: U.S. President Donald Trump claimed that Iran has agreed never to acquire a nuclear weapon as part of what he described as a historic peace agreement that ended tensions in the Strait of Hormuz. Speaking at a Mack Trucks manufacturing facility in Pennsylvania, Trump said preventing Iran from obtaining a nuclear weapon remained the central objective of his administration's policy towards the Islamic Republic.
12: As you know, we just achieved a historic peace agreement with Iran to end the conflict in the Strait of Hormuz. And by the way, yesterday, 19 million barrels of oil flowed out of the Strait of Hormuz, a very beautiful place. That's the most oil in the history of the Strait. No, it's never been any, you've never seen anything like that. We are ensuring one thing very importantly. Iran will never have a nuclear weapon, and they've agreed to that.
8: The International Maritime Organization, IMO, announced an evacuation plan for more than 11,000 seafarers still stranded in the Strait of Hormuz. IMO Secretary General Arsenio Dominguez said in a statement that the IMO has secured the necessary safety guarantees and verified safe navigation conditions to support the evacuation operation. The operation follows the signing of a Memorandum of Understanding between Iran and the United States and will be carried out in close cooperation with Iran, Oman, other countries in the region, and the maritime industry. Back home, Tamil Nadu government has approved the Vetri Tamidagam vision document. A key initiative of the document is Maternal Uncle's Gold Ring Scheme. Under the scheme, a 1 gram gold ring will be presented to newborns of families permanently residing in Tamil Nadu, provided the delivery takes place in government hospitals. The state government has allocated an annual budget of 755 crore rupees for its rollout. Chief Minister C. Joseph Vijay has directed that tenders for the scheme will be invited immediately. On to sports. In the FIFA World Cup 2026, Portugal crushed Uzbekistan by 5-0 in the Group K at Houston in United States. The 41-year-old Cristiano Ronaldo scored 2 goals to help Portugal roll to a 5-0 win over Uzbekistan. Ronaldo became the first player to score in 6 different World Cup tournaments with his goals, adding another impressive accomplishment to his storied career. He was named Man of the Match. The Group L match between England and Ghana at Boston Stadium in Foxborough has concluded in a goalless draw. Following the draw, both teams moved to 4 points from 2 matches, remaining tied at the top of Group L. In another Group L fixture,

नमस्कार, ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज करती हूं आपका वेलकम, स्वागत और खैर मकदम भी। और आप क्या करेंगे? जल्दी से खोलेंगे अपना फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टैब, जो भी आपके पास मौजूद हो। fmgoldair@gmail.com। जी हाँ, बिल्कुल इसी एड्रेस पर भेजेंगे अपना नाम, कहाँ से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, और इसके साथ ही कुछ शेर व शायरी या कोई ऐसी बात जो बस बात बना दे। लिख भेजिए जल्दी से। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं हमें, 9868868753 है हमारा नंबर। और जनाब, बात बस इतनी सी नहीं है, टेस्ट होगी आपकी फिल्मी नॉलेज भी, क्योंकि आपको सुनवाने वाली हूँ आज एक बार फिर एक खूबसूरत सा म्यूजिक पीस जो एक फेमस रॉक एंड रोल गाने का हिस्सा है और जिसे सुनकर आपको पहचानने हैं गीत के बोल। और फिर क्या करना है? बस वो बोल लिख कर भेज देने हैं। और क्या, तो सुनिए, ये रहा वो म्यूजिक पीस।

तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही फेमस गाना है ये और रॉक एंड रोल गाना है ये, मस्ती भरा जिसे सुनकर कदम रुक ही ना पाए, है ना। तो जल्दी कीजिए, देर करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। और जैसा कि आपके मैसेजेस आने शुरू भी हो गए हैं मेरे पास, उन्हें करूंगी मैं लगातार शामिल, लेकिन उससे पहले चलिए एक फरमाइश पूरी क्यों ना कर दी जाए। तो सबसे पहला गीत जो आज हम दिल का मेल बॉक्स में सुनने वाले हैं, उसकी फरमाइश आई है हमारे पास सीधा मोताला महाराष्ट्र से। जी हाँ, और विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार ने भेजी है ये फरमाइश और बहुत ही खूबसूरत गीत है। फिल्म है प्रेम गीत और सुरेश वाडेकर साहब के साथ अनुराधा जी की मीठी आवाज।

और देखिए हम भी मिल गए हैं एक बार फिर। दिल का मेल बॉक्स चल रहा है प्रोग्राम, जहां आप भेज रहे हैं लगातार मैसेजेस और ईमेल्स भी, जिन्हें मैं करूंगी अब कार्यक्रम में शामिल। तो जनाब, मैसेज आया है तुलसी मस्कीन साहब का, अपना फरमाइशी गीत लिखकर भेजा है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से लिखा है और इनके साथ शामिल हैं वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से भी शामिल हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। और अगला मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है लालगिरी जी का, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से सीधा आ रहा है ये ईमेल। हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी इनके साथ शामिल हैं। लिख रहे हैं कि कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स, पेशकर्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा भी धन्यवाद स्वीकार कीजिए इस ईमेल को भेजने के लिए। और चलिए, अब याद दिलाना पड़ता है आपको हर बार कि भाई मेरी नजरें ढूंढती हैं उन मैसेजेस को, उन ईमेल्स को, जिनमें होती है कुछ शेरो शायरी या कुछ खास बात, क्योंकि सिर्फ नाम पढ़ने में या नाम शामिल करवा लेने में वो बात कहां, जो अपना लिखा हुआ कुछ बढ़िया सा अगर पढ़ा जाए तो मुझे भी पढ़ने में मजा आए और आपको भी सुनने में खुशी हो, है ना। तो जल्दी कीजिए, वक्त अभी है हमारे पास, कुछ ढूंढिए अच्छा सा और लिख भेजिए। और फरमाइशी गीत और आज के सवाल का जवाब तो आप लिखकर भेज ही रहे हैं। चलिए इसी बात पे एक बार फिर आपको वो धुन सुना देती हूँ जिसे आपको सुनना है और पहचानना है कि वो किस गीत का हिस्सा है।

तो एनर्जी आ गई है इस खूबसूरत से म्यूजिक पीस को, इस एनर्जी से भरे म्यूजिक को सुनने के बाद। तो अब देर मत कीजिए, जल्दी से लिख भेजिए कि कौन सा है ये गाना और जो कुछ भी जानते हैं आप इस गाने के बारे में लिख डालिए। तो चलिए इसी बात पर अगला मैसेज हम शामिल कर लेते हैं। लिखा है कि धड़कनों की बातों को महसूस करना, उन बातों को समझ कर जवाब देना। कहने के लिए तो ये सामान्य बात होती है, लेकिन दिल की बात कहने के लिए न जाने कितने महीने लग जाते हैं, न जाने कितने साल गुजर जाते हैं। शायद इन्हीं हालात के बीच में रहने वाले शख्स जो भी होते हैं, हम कह सकते हैं कि मोहब्बत इसी को कहते हैं, प्यार इसी को कहते हैं। प्यार की मौजूदगी ही जीवन को विचलित कर देती है और प्यार की खुशबू ही प्यार की पहचान कराती है। बात तो बड़ी गहरी लिखी है जनाब, और गाना भी बड़ा गहरा और बड़ा ही खूबसूरत चुना है इन्होंने। जिसकी फरमाइश लिखकर भेजी है उसे हम करेंगे पूरा, लेकिन कहां से आई है फरमाइश, किसने भेजा है मैसेज, ये तो सुन लीजिए। शिवाजी चौक कटनी से आया है ये मैसेज। अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी और यश और उनके मम्मी पापा भी इस मैसेज में शामिल हैं। क्या बात है जी, लगता है कि पूरा मतलब जो कॉलोनी है आपकी वो शायद इस वक्त प्रोग्राम सुन रही है और सबने अपना अपना नाम इसमें लिखकर भेजा है। और वाकई ये मैसेज पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और एक कमाल की बात बताऊं, सेम सॉन्ग की फरमाइश हमें एक और लिसनर से भी आई है। कौन है वो सुनिए। बोध राज खोरवाल जी, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, उत्तम नगर, दिल्ली से आई है फरमाइश। आप दोनों की फरमाइश एक है, तो चलिए हम भी इंजॉय करते हैं इस खूबसूरत गाने को।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

मेल बॉक्स खुला हुआ है, प्रोग्राम जारी है और आपके साथ मैं हूँ नाज। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपसे की थी रिक्वेस्ट, आपने भेजनी शुरू कर दी हैं बड़ी ही खूबसूरत सी शायरियां भाई, जिन्हें शामिल तो करना ही पड़ेगा। तो लिखा है कि माइक संभालो तो महफिल जगमगाए, नाज की आवाज दिलों को छू जाए, शब्दों में मिठास, लहजे में नजाकत, आरजे ही नहीं तुम हो मोहब्बत। नाज यूं ही चमकती रहो, तुम्हारी आवाज यूं ही दिलों तक पहुंचती रहे। क्या बात है अनुजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनु बड़जात्या जी का है ये मैसेज, सीधा मुंबई से आया है। शमशुल खान और अनुराज बेनारा इनके साथ इस मैसेज में शामिल है। और अगला मैसेज आया है चंडीगढ़ से। लिखते हैं कि सुख प्राप्त करने की चाह में आदमी मकान बदलता है, फिर दुकान बदलता है, और कभी कभी देश भी बदल देता है, और कभी कभी भेष भी बदल देता है, लेकिन अपनी सोच अपना स्वभाव बदलने को बिल्कुल राजी नहीं है। वो भूमि नहीं, अपनी भूमिका बदलो। जिस दिन आपने अपना स्वभाव जीत लिया, उसी दिन आपका अभाव मिट जाएगा। क्या बात है। सतीश अनेजा जी का ये ईमेल आया सीधा चंडीगढ़ से, बिमला अनेजा जी के साथ। आपका भी बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज बहुत ही प्यारा है। जीवन टेस्ट है, खुशियां रेस्ट है, ज्यादा सोचना वेस्ट है, क्योंकि हम खुद ही इस संसार में कौन है, गेस्ट हैं। इसलिए स्वयं खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, यही हमारे लिए बेस्ट है। क्या बात है। और ये आपका जो मैसेज है ना सर, ये भी बेस्टम बेस्ट है। उत्तम नगर दिल्ली से आया ये मैसेज बोध राज घोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश इस मैसेज में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खूबसूरत से मैसेज के लिए। और अगला मैसेज शामिल करेंगे हम, जिसकी जैसी सोच वैसी तो कहानी रखता है, वैसी वो कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है, हादसा उसका क्या बिगाड़ लेगा, जो घर से निकलते वक्त माँ की दी हुई निशानी रखता है, जो औरों के लिए जीता है ईश्वर उस पे मेहरबानी रखता है, हमारा देश महफूज है, महफूज ही रहेगा, इसकी सरहद की खुदा निगहबानी करता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से आया है भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष इसमें शामिल है। और चलिए, घड़ी पर डाल ली है मैंने नजर, 10:51 और 10 सेकंड भी हो चुके हैं जनाब। तो हमारे पास अभी है थोड़ा सा वक्त, तो कुछ और मैसेजेस हम शामिल कर लेते हैं। मेल का रुख कर लिया है मैंने। कृष्ण कुमार गुप्ता जी का ईमेल खोल लिया है। लिखते हैं कि विश्वास का पक्षी प्रभात होने से पूर्व ही प्रकाश का अनुभव करने लगता है और खुशी से गाने लगता है। बिल्कुल सही बात है। और आज के सवाल का जवाब भी लिखकर भेजा है भाई, सही है या गलत थोड़े से इंतजार के बाद आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल अगले मैसेज को ढूंढ रही हूं मैं, जिसमें लिखी हो कुछ ऐसी ही बात, मिल गया है मुझे। दोस्ती दिल से हो तो वफा बन जाती है, दोस्ती प्यार से हो तो इश्क बन जाती है, दोस्ती गैरों से हो तो पहचान बन जाती है, दोस्ती अच्छे इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने भेजा है ये मैसेज और एक बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश भी लिखकर भेजी है। और एक और मैसेज, होस्ट नाज जी हम भी सुन रहे हैं, प्लीज एनी सॉन्ग में शामिल कर लीजिए। ये मैसेज आया है रचिता मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, तुलसी मस्कीन जी की ओर से, आशीष राजा भी इसमें शामिल है, चंडीगढ़ से ही है ये मैसेज। चलिए, और
ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से भी आया है मैसेज हमारे पास। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू भी इस मैसेज में शामिल हैं। लेकिन शिकायत है मेरी आपसे कि ना आपने आज के सवाल का जवाब लिखा, ना कोई शेर व शायरी लिखी, ये क्या बात हुई भाई? कोई बात नहीं, अगली बार आप जरूर लिखेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। खूबसूरत बहुत जिसका अंदाज है, आई हुई शो में गुल नाज है, जिसके आने से महक उठती है दिल की महफिल, धुन ये संगीत की क्या बजी आज है। ये तो यही तो आपको पहचाना है, पहचान लिया तो लिखकर क्यों नहीं भेजा। शमशुल कमर राही साहब, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान और फैजान खान का ये मैसेज है। कहाँ से है? गंज डुंडवारा से है भाई। तो देर नहीं हुई है, अभी भी लिखकर भेज दीजिए जल्दी से गाने के बोल, ठीक है। और अगला मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ किसका, मास्टर अशोक वर्मा जी का कर लेते हैं। और जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से आया है ये मैसेज। अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना इसमें शामिल है। सुदामा नगर खंडवा से भी इसमें लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप शामिल हैं और फरमाइश लिखकर भेजी है अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ईमेल के लिए। और अगला मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छा, अगला मैसेज मैं शामिल करूँ उससे पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेल करते हैं या मैसेज करते हैं तो प्लीज प्लीज प्लीज एक ही बार करें, या अगर दोबारा करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक कर करें। लगातार मैसेज करने से क्या होता है ना कि जो बेचारे लिसनर्स ईमानदारी से सिंगल मैसेज करते हैं उनके मैसेजेस खो जाते हैं और बार बार बार बार रिपीट एक ही मैसेज स्क्रीन पर नजर आता है, तो ये तो थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाती है ना। तो प्लीज प्लीज प्लीज भरोसा रखिए हम पर, हम करेंगे आपके मैसेज शामिल और आपकी फरमाइश भी पूरी। बस थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है और एक ही मैसेज करने की जरूरत है, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि अगली बार आप ख्याल रखेंगे इस बात का। फिलहाल चलिए बात कर लेते हैं आज के उस गीत की जिसकी धुन, शुरुआती धुन मैंने आपको सुनाई, क्योंकि वक्त अब बहुत तेजी से बीत रहा है। तो जनाब, साल था वो 1965 जब एक सस्पेंस और थ्रिल से भरी फिल्म रिलीज हुई थी और जिसका नाम था गुमनाम। उसी फिल्म से है ये आइकॉनिक गाना जिसे आवाज दी रफी साहब ने, संगीत से सजाया शंकर जयकिशन की जोड़ी ने और गीत के शानदार बोल लिखे शैलेंद्र जी ने। एक डिस्को क्लब में ये गाना फिल्माया गया है जिस पर उस समय की मशहूर डांसर लक्ष्मी छाया जी को आप कोरियोग्राफर हरमन बेंजामिन के सिखाए स्टेप्स करते हुए देखते हैं। और एक खास बात बताऊं आपको कि साल 2001 में यानी पूरे 36 साल बाद ये गाना हॉलीवुड मूवी घोस्ट वर्ल्ड, जी हां, घोस्ट वर्ल्ड के शुरुआती क्रेडिट्स में कई सीन्स में ये गाना सुनाई दिया था। और चलिए हम भी सुने ये मस्ती भरा सॉन्ग। उससे पहले जल्दी से उन लिसनर्स के नाम शामिल कर लेते हैं जिन्होंने इस धुन को जल्दी से पहचाना और गीत के बोल भी लिखकर भेज दिए। प्रकाश गोगिया दिल्ली से, जयराम खोरवाल उत्तम नगर से, सतप्रकाश गोयल, मधु किरण, राजू मिंगलानी, फारूक अली खान, फैजी फराज, गुन्नौर यूपी से, सुदर्शन मुखी शांतिनगर सोनीपत से आया जवाब। और मैं जानती हूँ इसके अलावा भी कई सारे जवाब आए हैं जो कहीं खो गए हैं, क्योंकि इतने सारे ईमेल्स और इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि उनमें से ढूंढना टटोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।

देखिए जाना कहीं नहीं है क्योंकि इस गाने के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद फिर होगी हमारी मुलाकात। एक बेहद खूबसूरत जगह की तस्वीर लेकर रहूंगी हाजिर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्यसमूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान के नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य से में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों तथा समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दीं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping, led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threat for us.
2: Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, has said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. He said this while releasing the latest edition of the Trade Watch quarterly report in New Delhi. Dr. Lahiri added that India's exports reached $1.84 trillion and imports grew by 6.5% in the last quarter. Union Home Minister Amit Shah today paid tribute to Rani Durgavati on her martyrdom day. In a social media post, the minister described Rani Durgavati as a valiant queen and symbol of feminine power who sacrificed her life in a heroic struggle against Mughal invaders to protect sovereignty and cultural heritage. Mr. Shah added, Rani Durgavati remains an eternal inspiration for good governance and service. A fire incident was reported near Labour Jhuggi Udyog Bhavan in New Delhi in the early hours of the day. According to Delhi Fire Services, a call was received at 3 a.m., after which over 20 vehicles carried out firefighting operations. The fire has been brought under control. Further details are awaited. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said the rollout of Passport Seva Program 2.0, introduction of chip-enabled e-passports, opening of new Passport Seva Kendra and Post Office Passport Seva Kendra are enhancing ease of travel, expanding access to global opportunities and empowering citizens. In a social media post, the minister extended greetings to all passport authorities in India and abroad on the occasion of the 14th Passport Seva Divas. India has strongly criticized Pakistani Defense Minister Khwaja Asif's remarks over the situation in Pakistan-occupied Kashmir, saying these remarks are disparate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said New Delhi categorically rejects these fabricated claims with the contempt they deserve.
4: The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
2: The United States Senate has passed a bill to pause President Donald Trump's military campaign against Iran and seek congressional approval before any further action is taken. Last night, the chamber voted 50-48 to pass the resolution, which had been approved in the House of Representatives earlier in the month. Last night's vote marked the first time a war-powered resolution had successfully passed both chambers of Congress. In the FIFA World Cup 2026, Portugal crushed Uzbekistan by 5-0 in the Group K at Houston in United States. The 41-year-old Cristiano Ronaldo scored 2 goals to help Portugal roll to a 5-0 win over Uzbekistan. Ronaldo became the first player to score in 6 different World Cup tournaments with his goals, adding another impressive accomplishment to his storied career. And that is the end of this news bulletin.

स्वागतम, अस्सलामुअलैकुम एंड हैव अ ग्रैंड वेलकम बाय मी, आपकी होस्ट और घुमक्कड़ दोस्त नाज। ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और जहां के स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त टाइम हुआ है 11:11:30। एंड एज यू नो ऑलरेडी कि ये समय है सैर सपाटे का, क्योंकि ये समय है हमारी खास पेशकश तस्वीर का। तो खूबसूरत गानों से सजी तस्वीर की आज की प्लेलिस्ट के साथ मैं तो हूँ पूरी तरह से तैयार, लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए। आज आप मेरे साथ एक बार फिर चल रहे हैं पूर्वोत्तर भारत, और करने वाले हैं सिक्किम राज्य के एक खूबसूरत हिल स्टेशन की सैर। बर्फ से ढकी पहाड़ों की ऊंची चोटियां यहां से आपको नजर आएंगी, और आप करेंगे भारत की पहली ग्लास स्काई वॉक मेरे यानी नाज के साथ। तिब्बती भाषा में पदलिंग और ऐतिहासिक रूप से पेमांग गत्से मठ के लिए मशहूर इस जगह को आम बोलचाल में किस नाम से जाना जाता है, ये मैं नहीं, हर बार की तरह आप ही मुझे बताएंगे कहां और कैसे। वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी याद दिला रही हूं कि एफएम गोल्ड एआईआर दिल्ली @gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे 9868687 पर, वो भी इस सॉन्ग के शुरू होकर खत्म होने से पहले।

भाई दो लोगों ने पूरी और बेहतरीन कोशिश की है आज की डेस्टिनेशन को पहचानने की, लेकिन थोड़े से अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आपका जवाब सही नहीं है। सुदर्शन मुखी जी शांतिनगर सोनीपत से और अनु बड़जात्या जी मुंबई से, आपने कोशिश बहुत अच्छी की लेकिन थोड़े से दूर रह गए आप। सिक्किम राज्य के बेहद खूबसूरत और मशहूर हिल स्टेशन पेलिंग की आज सैर करेंगे, जो कि समुद्र तल से 2150 मीटर यानी लगभग 7200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। खासियतें कई सारी हैं जिन पर सिलसिलेवार बातें करते रहेंगे, लेकिन पहले ये तो जान लीजिए कि यहाँ यानी पेलिंग तक पहुंचेंगे कैसे। तो भाई फ्लाइट लेंगे तो लैंड करेंगे बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी पेलिंग से दूरी 126 किलोमीटर के आसपास है। आराम से टैक्सी या कैब के जरिए आप ये सफर तय कर सकते हैं। बाय ट्रेन आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि सिलीगुड़ी में मौजूद है, और पेलिंग से यहाँ की दूरी है लगभग 120 किलोमीटर के आसपास। पूरी तरह बाय रोड ही जाना है, तो जनाब बागडोगरा पहुंचिए और फिर वहीं से बुक कर लीजिए। प्राइवेट टैक्सी या फिर शेयरिंग कैब का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। फिलहाल सुनिए ये अगला गाना, फिर जब वापस आएंगे तो मुझे है आपको बताना कि किस मौसम में चाहिए आपको पेलिंग का प्लान बनाना।

देखिए वैसे तो साल भर ही पेलिंग का मौसम सुहाना ही रहता है, लेकिन खासकर मार्च से जून के बीच अगर आप यहां आते हैं तो आसमान साफ होने की वजह से आप कंचनजंगा पर्वत की चोटियां साफ देख पाएंगे। छोटा सा खूबसूरत और शांत शहर है ये, तो छुट्टियां बिताने के लिए परफेक्ट प्लेस के रूप में ये खुद को साबित करता है। फोटोग्राफी या फिर रील्स बनाने के अगर हैं आप शौकीन तो भाई अप्रैल से मई का टाइम स्लॉट आपको चुनना चाहिए, क्योंकि इस समय आप घाटी को लाल और गुलाबी फूलों से ढका हुआ पाएंगे। स्नोफॉल एंजॉय करना है तो आइए दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जनवरी के बीच, और अपने साथ भरपूर मात्रा में गर्म कपड़े रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मॉनसून के दौरान पेलिंग जाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान सिलीगुड़ी से पेलिंग के पहाड़ी रास्ते थोड़े खतरनाक हो जाते हैं। बाकी मौसम में जब आएंगे तो क्या कुछ एंजॉय करेंगे यहां यानी पेलिंग में जानेंगे, लेकिन इस अगले ट्रैक को सुनने के बाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम में राजधानी गैंगटॉक के बाद दूसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनकर उभर रहा है पेलिंग, जहां की सैर पर हम निकले हैं और प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर। और पेलिंग पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले जाना चाहिए यहां मौजूद पेमाइंग गत्से मठ, जो कि साल 1705 से यहां शान से खड़ा है। सिक्किम के सबसे मशहूर धार्मिक स्थलों में इसकी गिनती होती है और ये मठ बौद्ध धर्म के निंगमा संप्रदाय के अंतर्गत आता है। इस मठ का खूबसूरत आर्किटेक्चर आपकी आंखों को खूब भाएगा और यहाँ का शांत और आध्यात्मिक वातावरण आपको उस शांति का अनुभव कराएगा यकीनन जिसकी तलाश आपको जरूर होगी। इसके बाद सांगा चोइलिंग मठ भी आपको जरूर जाना चाहिए, जिसका निर्माण हुआ था साल 1642 में और जो कि घने जंगलों के ऊपर बादलों के बीच मौजूद है। प्रार्थना के झंडों की फड़फड़ाहट और कभी कभी मठ के अंदर से सुनाई देने वाला मंत्रों का उच्चारण आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा, जिसे आप कभी भुला तो नहीं पाएंगे, ये पक्की बात है।

देखिए भुला तो आप एक और चीज नहीं पाएंगे और जिसे आप एक्सपीरियंस करेंगे यहीं पेलिंग में, सांगा चोइलिंग मठ के ठीक बगल में। बेसिकली ये 137 फुट ऊंची एक स्मारक है जिसकी बारीकियों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसके ठीक नीचे खड़े होंगे, और इसके लिए करनी होगी आपको ग्लास स्काई वॉक। एक्चुअली ये एक पुल है जिसकी जमीन कांच से बनी है, और जमीन के काफी ऊपर होने की वजह से ये आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। इसके बाद आप निकल जाइए राब डेंटसे की ओर, जो कि साल 1670 से 1814 तक सिक्किम की दूसरी राजधानी रहा, और अब यहाँ के खंडहर तब के इतिहास की झलक आपको दिखाते हैं। ताशी दिंग मठ भी एक बेहतरीन चॉइस है। राथोंग चू और रंगीत नहीं के बीच मौजूद ये मठ सिक्किम के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है, और जिसके कोने में, हर कोने में आपको शांति और एकांत का अनुभव होता है, ठीक वैसे जैसे इस अगले गाने को सुनने के बाद महसूस होता है।

0: ऊंचे पहाड़ों के खूबसूरत नजारों।
1: मेरे हुए 213.67 मीटर बैंड को 1404 किलोहर्ज में हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। साथै हामीलाई 103 मेगाहर्ज मा एफएम कञ्चनजंगा मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, हामी सुनाउन लागेका छौं कार्यक्रम नारी संसार, तर त्यसभन्दा अघि सुनाउन लागेका छौं छोटो सन्देश।
2: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा एसआईआर अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
3: गत 30 मईदेखि 28 जून 2026 सम्म बीएलओहरूले घर घरमा गएर इनुमेरेशन फर्म वितरण अनि संकलन गर्नेछन्।
2: सबै मतदातालाई आफ्नो फोटो सहित फारम राम्ररी भरेर समयमा नै बुझाउने अनुरोध छ।
3: 1 जुलाई 2026 सम्म 18 वर्ष पुग्ने योग्य मतदाताहरूले पनि फर्म 6 बुझाउन सक्नेछन्।
2: फारम ईसीआईएनईटी एप अथवा भोटर पोर्टल मार्फत अनलाइन पनि बुझाउन सकिन्छ।
3: राज्य चुनाव आयोग सिक्किम सरकारद्वारा जनहित में जारी।
4: Hey guys! आज तो पार्टी चाहिए।
5: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
6: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
4: पिज़्ज़ा पार्टी। चल अपना कार्ड और पिन दे।
6: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
4: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
6: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता वा सुन्न लागेका छौं हिन्दी भाषा पाठ।
1: नमस्ते गुरुआमा।
2: नमस्ते बच्चो। नानीहरू तिमीहरू ठिकै छौ?
1: गुरुआमा हामी सबै ठिकै छौ।
2: बहुत अच्छे बच्चो। नानीहरू अब सबैभन्दा पहिलो आफ्नो आफ्नो परिचय हाम्रो श्रोताहरूलाई देऊ त।
3: मेरो नाम मृदुल मयङ झा हो। म कक्षा 8 होली क्रस स्कुलमा पढ्दैछु।
4: गुरुआमा मेरो नाम स्नेहा मेरी लेप्चा हो। म कक्षा 8 होली क्रस स्कुलमा पढ्दछु।
2: बहुत अच्छे बच्चो। नानीहरू हिन्दी र हिन्दी व्याकरणको ज्ञान हुनु हामीलाई आवश्यक छ, किनकि हिन्दी हाम्रो राष्ट्रभाषा हो अनि जब हामीलाई हिन्दी आउँछ तब हामी देशको कुनै कुनामा गएर पनि हाम्रो बातहरूको आदान प्रदान गर्नुमा हामीलाई साह्रो पर्दैन। बुझ्यो तिमीहरूले?
1: हजुर गुरुआमा।
2: बहुत अच्छे बच्चो। नानीहरू हिन्दी भाषा पाठमा आजको हाम्रो विषय रहेको छ उपसर्ग र प्रत्यय। लु नानीहरू आज हामी उपसर्ग र प्रत्यय सिक्छौ। सिखोगे न बच्चो?
1: हजुर गुरुआमा।
4: हामी सबै उपसर्ग र प्रत्यय सिक्नुको लागि पूरा उत्साहित छौ।
2: लु नानीहरू शब्द निर्माण भाषाको महत्वपूर्ण इकाई हो। शब्द भएन भने हामी आफ्नो भावना व्यक्त गर्नु सक्दैन। लु नानीहरू आज हामी उपसर्ग र प्रत्ययको द्वारा शब्द निर्माण गर्नु सिक्नेछौ। नानीहरू सबैभन्दा पहिलो हामी उपसर्ग सिक्नेछौ। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो शब्द के पहले लग कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। एक बार फिर से बताती हूँ, तपाईहरू ध्यान लगाएर सुन्नुहोस्। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो शब्द के पहले लग कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। बुझ्यो होइन तिमीहरूले?
1: हजुर गुरुआमा।
2: लु स्नेहा अब तिमी उपसर्ग को परिभाषा भन्न त।
4: गुरुआमा जो शब्द किसी शब्द के शुरू में लग कर उस शब्द के अर्थ को पूरी तरह बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं।
2: नानीहरू उपसर्ग दुईटा शब्दहरूको योगद्वारा बनिन्छ, उप र सर्ग। उपको अर्थ हो समीप अथवा पास अनि सर्गको अर्थ हो बस्नु। त्यसैले उपसर्गको अर्थ हुन्छ छौमा बसेर अर्को नयाँ अर्थ बनाउनु। जैसी हारको पहिलो प्र उपसर्ग लगायो भने त्यो प्रहार हुन्छ, यसी प्रकार यदि जनको पहिलो परि उपसर्ग लगायो भने त्यो परिजन हुन्छ और यदि कर्म के पहले सु लगा दे तो सुकर्म हो जाता है। लो मृदुल अब तिमी एउटा उदाहरण भन्नुहोस्।
3: गुरुआमा काशको पहिलो अ उपसर्ग लगायो भनी काशका अर्थ बदलेर आकाश हुन्छ।
2: एकदम ठिक। अब स्नेहा यसको उदाहरण भन्न त।
4: गुरुआमा यदि योग शब्दको पहिलो वि उपसर्ग जोड्यो भने वियोग हुन्छ।
2: कति राम्रो नानीहरू। जैसा कि हमने ऊपर पढा है कि ज्यादातर उपसर्गो का स्वतन्त्र अस्तित्व ना होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जस्ते अन इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, मगर जब इसे बन शब्द के पहले लगा दिया जाता है तो ये अनबन बन जाता है, जिसका एक विशेष अर्थ मन मुटाव होता है। बुझियो हो न तिमीहरूले?
1: हजुर गुरुआमा बुझियो।
2: शाबाश नानीहरू। बच्चों आप सभी ये याद रखिएगा कि उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों में तीन स्थिति उत्पन्न होती है। पहला है शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है, शब्द को अर्थ में एउटा विशेषता आउँछ। दूसरा है शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, शब्द को अर्थहरूमा प्रतिकूलता उत्पन्न हुन्छ। शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है, शब्द को अर्थ में कुनै विशेष अंतर हुँदैन। बुझ्यो नानीहरू?
1: हजुर गुरुआमा।
2: एकदमै राम्रो नानीहरू। नानीहरू हामीले उपसर्ग को परिभाषा त जान्यो, अब हामी हिन्दी को जे उपसर्ग छ त्यसको बारेमा जान्ने छौ। बच्चो हिन्दी के जो उपसर्ग हैं वे हैं दु अध अन कु औ अ नि ति उ चौ पंच उन। अब हर उपसर्ग से शब्द बनाएंगे, बुझियो नानी हरो।
4: जी गुरामा।
2: दो उपसर्ग, दो का अर्थ होता है बुरा, दो हीन। इस उपसर्ग को लगाने से दुबला, दुर्जन, दुपहरी जैसे शब्द निर्माण होंगे। मृदुल तिमी दो उपसर्ग लगाएर एउटा शब्द भनता।
3: गुरामा, दो उपसर्ग देखी दुलारा अनि दुगुन्ना हुन्छ।
2: एकदमै ठीक मृदुल। अब स्नेहा तिमी एउटा उदाहरण भनता।
4: दु उपसर्ग देखिन दुर्बल र दुकान हुन्छ।
2: एकदम सही स्नेहा। अब दोस्रो उपसर्ग छ अध। अध भनेको आधा हो। इस अध उपसर्ग से बनेंगे अध पका, अध मरा, अध कच्चा, अध कचरा, अध खिला, ऐसे कई शब्द बनेंगे। इसके बाद अन उपसर्ग, इसका अर्थ होता है अभाव। यसको कुन कुन उदाहरण हुन्छ।
4: अनजान, अनमोल,
2: अनपढ़, अनहोनी। शाबाश नानीहरू, एकदम ठीक।
3: अन उपसर्ग देखी अनचाहा अनि अन देखी पनि त हुन्छ गुरामा।
2: हजुर नानी, अन उपसर्ग देखी अनचाहा अनि अन देखी पनि हुन्छ। यसको बादमा उपसर्ग उन भनेको के हो। एक कम, जस्तै उन्तीस, उन्चास, उन्नासी। बुझे नानी।
1: हजुर गुरामा।
2: अब हामी कु उपसर्ग सिक्छौ। कु का अर्थ है बुरा, हीन। इसके प्रयोग से ज्यादातर नकारात्मक शब्द बनते हैं, जैसे कुचक्र, कुमार्ग, कुख्यात। बुझे नानी हरुल।
1: हजुर गुरामा।
4: गुरामा, कु उपसर्ग देखिन कुरूप अनि कुरीति पनि त हुन्छ।
2: हाँ बिल्कुल, कु उपसर्ग से कुरूप और कुरीति भी होती है। कु उपसर्ग को बाद मा औ उपसर्ग। औ उपसर्ग से औषधि, औसत जैसे कई शब्द बनते हैं। यसरी नहीं, अ उपसर्ग देखी अभाव, अछूता, अटल, अचेत जैसे शब्द बनेंगे। बुझियो तिमी हरुले।
1: हजुर गुरामा।
2: अब हामी नी उपसर्ग देखी अलिक शब्द बनाउने छौ, जस्तै निडर, निहत्था, निहाल। इसी प्रकार चौ उपसर्ग से बनता है चौपाई, चौपाया, चौराहा, चौकन्ना। अब मृदुल तिमी अ उपसर्ग देखी एउटा शब्द भन्न त।
3: अ उपसर्ग देखी अनहोनी हुन्छ गुरामा।
2: हैन नानी, अनहोनी हुँदैन। अनहोनी अन उपसर्ग देखी बनिन्छ। अर्को शब्द बनाऊ।
3: अ उपसर्ग देखी अकाल हुन्छ।
2: हाँ ये बिल्कुल सही है मृदुल। अब स्नेहा आप नी उपसर्ग से एक शब्द बनाइए।
4: गुरामा, नी उपसर्ग देखी निवास र निबन्ध हुन्छ।
2: एकदमै ठीक स्नेहा, बहुत अच्छे। नानीहरू उपसर्गमा अहिलेसम्म जति सिकेको छ त्यो सबै राम्रोसँगले सिक्नु भयो।
1: हजुर गुरामा, यो सबै हामीले सिक्यो।
2: श्याबास नानीहरू, तिमीहरू ध्यान दिएर पढ्नु हुँदैछ।
4: धन्यवाद गुरामा।
2: इसी तरह चौ उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं वे हैं चौपाई, चौपाया, चौराहा, चौकन्ना। अब उ उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं उनमें से कुछ हैं उचक्का, उछलना, उखारना। इसी प्रकार पाई शब्द मा चौ उपसर्ग लाग्यो चौपाई शब्द को निर्माण भय रहे को छ। इसके बाद है पंच उपसर्ग, इसका अर्थ है पांच। और पच उपसर्ग से पचरंगा, पचमेल, पचमढ़ी, पचकुटा जैसे शब्द बनेंगे। अब ती उपसर्ग है। ती भने को तीन हो, जैसे तिरंगा, तिकोन, तिमाही। बुझ्यो तिमी हरुले।
1: हजुर गुरामा।
2: श्याबास नानीहरू। नानीहरू तिमीहरू यो पनि ध्यानमा राख्नुहोस् कि धेरै बेला एउटा शब्द सित दुई दुई या तीनवटा उपसर्ग प्रयुक्त हुन्छ। जस्तै कार के पहले उपसर्ग प्रति और उप लगा दे तो प्रत्युपकार होगा। इसी तरह यदि गठित के पहले सु और सम उपसर्ग लगा दें तो सुसंगठित हो जाता है। बुझे नानीहरू।
1: हजुर गुरामा।
2: नानीहरू तिमीहरू उपसर्ग विस्तार पूर्वक सिक्नु भएको छ। अब तिमीहरू प्रत्यय सिक्ने छौ। ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है लेकिन वे दूसरे शब्द के बाद लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि यस्तो शब्द जसको स्वतंत्र अस्तित्व हुँदैन तर त्यो शब्द को बाद मा अर्को शब्द लगाएर त्यसको अर्थ बदलिन्छ, त्यो प्रत्यय हुन्छ। जैसे भूल और अक्कड़ से भुलक्कड़। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में है और ऐ का अर्थ चलने वाला है। इसका मतलब प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में लगने वाला या चलने वाला। जस्ते भला शब्द मा आई प्रत्यय जोड़े रा भलाई शब्द बनिन्छ। आई शब्द प्रत्यय छ। बुझ्नु भयो तिमी हरूले?
1: हजुर गुरुमा।
2: अब तिमी हरू एक एक गरेर प्रत्यय को परिभाषा र उदाहरण दिनुहोस्।
3: गुरुमा प्रत्यय को अर्थ के हो बनी शब्द सित तर शब्द को पछाड़ी लगने व जोड़ीने जस्ते पाठ जोर अक पाठक।
2: अनि स्नेहा तिमी भन त?
4: गुरामा शब्द सित तर शब्द को पछाड़ी लगने व जोड़ने शब्दलाई प्रत्यय भनिन्छ।
2: बिल्कुल सही। नानीहरू तिमीहरू प्रत्यय को परिभाषा सिक्नु भएको छ। अब इसको विभिन्न भेदहरू सिक्नु। प्रत्यय के मुख्य दो भेद होते हैं। प्रत्यय को कति वटा भेद हुन्छ?
1: प्रत्यय को दुई वटा भेद हुन्छ।
2: एकदमै ठीक नानीहरू। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहिलो हामी कृत प्रत्यय सिक्ने छौ। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जुन प्रत्यय धातुओं को अंत मा जुड़िन्छ त्यसको अर्थ मा परिवर्तन हुन्छ तिनीहरूलाई कृत प्रत्यय भन्दछन्। नानीहरूले बुझ्यो?
1: हजुर गुरुमा।
2: नानीहरू कृत प्रत्यय पांच प्रकार के होते हैं। कृतवाचक प्रत्यय ये धातु के अंत में जुड़कर कर्ता का अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे दा ता दाता पाठ और अक पाठक।
4: गुरुमा एक पल्ट कृतवाचक प्रत्यय को बारे में नेपाली में समझाई दिनुहोस् न।
2: ठीक स्नेहा, यसलाई म नेपालीमा पनि भन्नि दिन्छु। यो धातु को अन्तमा जोडेर कर्ता को अर्थ प्रकट गर्छ। जस्तै आऊ प्रत्यय से टिकाऊ कमाऊ, आकु प्रत्यय से लडाकू, ऐत प्रत्यय से डकैत लठैत, हार प्रत्यय से होनहार पालनहार। बुझ्यो तिमीहरूले?
1: हजुर गुरुमा।
2: यसरी नै अब स्नेहा तिमी आरी प्रत्यय देखी एउटा शब्द भन्नु।
4: गुरामा आरी प्रत्यय देखिन खिलाड़ी अनि जुआरी हुन्छ।
2: एकदम ठीक। अब मृदुल तिमी आलु देखी शब्द भन त?
3: आलु देखी कृपालु अनि दयालु हुन्छ।
2: बिल्कुल सही मृदुल। आलु देखी कृपालु अनि दयालु हुन्छ। अब दोस्रो छ कर्मवाचक प्रत्यय। ये प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़कर कर्म का अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे ओना से बिछौना खिलौना और नी से ओढ़नी चलनी। बुझियो तिमी हरूले?
1: जी गुरामा बुझियो।
2: अब तेसरो हो करणवाचक प्रत्यय। ये प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़कर क्रियाओं के साधन का बोध कराते हैं। यो प्रत्यय धातु हरू को अंत मा जोड़ेर क्रियाहरू को साधन को बोध गर्छ, जैसे अन प्रत्यय से बेलन ढक्कन, आ प्रत्यय से मेला ठेला। बच्चों आप इसे ध्यान से सुनिए। अन प्रत्यय से बेलन ढक्कन, आ प्रत्यय से मेला ठेला, ई प्रत्यय से रेती फांसी, ऊ प्रत्यय से झाड़ू आड़ू, नी प्रत्यय से चलनी कतरनी। अब मृदुल तिमीले ई प्रत्यय देखी दुईटा शब्द भनता?
3: गुरामा ई प्रत्यय देखी त्यागी र बोली हुन्छ।
2: ठीकै छ मृदुल। अब स्नेहा तिमी भनता?
4: गुरामा अन प्रत्यय देखी पालन र नयन हुन्छ।
2: एकदमै ठीक स्नेहा। अब भाववाचक प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रियाओं के अंत में जुड़कर क्रियाओं का भाव बताते हैं, जैसे अंत से भिड़ंत गढ़ंत, अन से चलन मन। यसरी नै स्नेहा तिमी आवना प्रत्यय देखी दुईटा शब्द भन त?
4: गुरामा आवना प्रत्ययले पावना र डरावना हुन्छ।
2: स्याबास नानीहरू। अब कृत प्रत्यय का पांचवा प्रकार है क्रियाद्योतक प्रत्यय। ये प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़कर क्रियाद्योतक विशेषण बनते हैं, जैसे जाता हुआ मनुष्य रुक जाता है। ये वर्तमान कालिक विशेषण है। इसी तरह जाने को हम तैयार हैं, ये क्रिया विशेषण है। तो बच्चों, कृत प्रत्यय को आप लोगों ने समझ लिया ना?
1: जी गुरामा।
2: अब हमी प्रत्यय को दूसरो भेद को बारे में जानने छो। जो प्रत्यय धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर क्रिया से भिन्न संज्ञा विशेषण आदि शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ प्रत्यय चूर के बाद लगकर चूरा, इन प्रत्यय ग्राम के बाद लगकर ग्रामीण, ता प्रत्यय बुद्धिमान के बाद लगकर बुद्धिमता, इया प्रत्यय खाट के बाद लगकर खटिया। बुझे?
1: हजुर गुरुमा, हामी उपसर्ग अनि प्रत्यय को बारे मा राम्रो सँगले बुझ्यो।
2: स्याबास नानीहरु, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और पढ़ा है, यसरी नै तिमीहरु सदैव ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। अब हम अपने श्रोताओं से विदा लेंगे। नमस्ते।
0: सुनिरहनु भएको थियो हिन्दी भाषा पाठ। अब सुनाउन लागेका छौं दिलजली फिल्मबाट कुमार शानु को स्वरमा रहेको गीत। माफ गर्नु होला, आदित्य नारायण पनि साथमा छन्।
5: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
6: क्या कहती हो शामू की माँ?
5: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
6: माँ जानती हो, बाबूजी ने सबसे

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है, पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना। जी किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात। जी हां श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत यह भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब स्तर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसाकर के भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
3: Yes!
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
3: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
3: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
3: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
3: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
3: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
3: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करती।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग दीतल दासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
2: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
2: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुँचे और वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा से मिले।
5: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
4: जी डॉक्टर धीरेन्द्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
5: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
4: जी मैं प्रस्तुत हूँ।
5: तो फादर, मैं चाहता हूँ कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
4: जी अवश्य।
2: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
5: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
4: धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
5: जी
2: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
2: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
4: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति?
3: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
4: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
3: जी जी,
4: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
3: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
4: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
3: जी
4: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूँ राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल
5: उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
3: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ फादर बुल्के।
4: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूँ।
3: जी,
2: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
1: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है,
4: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
4: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल

0: उल्की बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
1: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के तीन प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन तीन तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
1: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग
5: सुनो देती एनसीईआरटी माथि आधारित प्रायोजित कार्यक्रम अब सुनौन लागेका छौं। दिल्ली केन्द्रबाट समप्रसार गरी विविध भारती सेवाहरू।

फिल्म का गीत है तो आपने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। हमारा गीत शुरू नहीं हुआ उसके पहले हमारे पास संदेश आ गया था कि ये बहुत बढ़िया गीत, ब्रह्मचारी फिल्म का यह गीत है, आपने पसंद किया। उसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, हमने कहा था कि आंख बंद कीजिए और बताइए कौन सी हीरोइन दिखाई दे रही है। तो एक श्रोता तो लिखते हैं, मुझे हर हीरोइन की सूरतें एक जैसी सुंदर दिखती हैं। सही बात है, इसमें आपके घर में रहने वाली हीरोइन भी होनी चाहिए। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, श्रीदेवी, मीना कुमारी, किसी को श्रीदेवी की ड्रेसेस याद आ गई, किसी को, अच्छा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बंद आंख से मैसेज कैसे लिखें, आंख खोलने के लिए तो कही, हाँ हाँ आप आंख खोल सकते हैं और आंख खोलकर संदेश भेज सकती हैं। इसके साथ ही बहुत सारे श्रोताओं को, किसी को साधना पसंद आई है, किसी को हेमा मालिनी, किसी की नजरों में कृति सेनन भी है, और कोई कहता है शिल्पा शेट्टी की फिटनेस जो है वो उन्हें प्रेरित कर रही है आंख बंद करने पर, किसी को मधुबाला दिखाई देती है, तो ब्रह्मचारी में मुमताज की साड़ी किसी को याद आ रही है, किसी को हरे रंग के दुपट्टे याद आ रहे हैं, तो किसी को कुछ नया बड़ा खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है जो याद आ रहा है। देखिए ये जो बात है ना, ये बात हमें हमारे सेंसेस से जोड़ती है कि हमें किसका क्या पसंद आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बंगाली सीनियर सिटीजन अपने हर वैवाहिक सांस्कृतिक फंक्शन में धोती कुर्ता पहनते हैं। जी बिल्कुल, और उसका उसी का प्रयोग कई सारी फिल्मों में भी किया गया है, इस बात को हम मानते हैं।

0: लिखते हैं कि कभी कभी हम ओल्ड फैशन समझकर ड्रेस अलमारी के कोने में रख देते हैं, जो बाद में कभी नए फैशन के रूप में लौटता है तो फिर हम उसे फिर से ड्राई क्लीन कराकर पहन लेते हैं। कितना बढ़िया आइडिया दिया है आपने वस्त्रों के फिर से उपयोग का। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो भाषा के साथ कपड़े बोली सब बचकुछ बदला हुआ दिखाई देता है। फैशन बदलता है लोगों की संस्कृति, आराम और व्यक्तित्व को दर्शाता है। आजकल सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का चलन है, लेकिन फैशन सिर्फ महंगे कपड़े नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी पसंद और बॉडी टाइप के हिसाब से कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने पूछा, शर्मिला के जूड़े सबसे अलग थे, पता नहीं सच होते थे या विक पहनती थी, हालांकि उनके बाल तो बड़े दिखाई देते हैं पर कौन जाने उनके जूड़े असली थे या वो बिक पहनती थी, ये बात तो हमें भी नहीं पता। पर चलिए, पसंद तो सबकी अपनी अपनी है। तो अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। इसके गीतकार का नाम बता दीजिएगा, इस गीत के गीतकार कौन है, फिल्म बॉबी से लिया गया ये गीत है। और दूसरा प्रश्न, जैसे मैं हमेशा दो प्रश्न आपको देती हूँ, दूसरा प्रश्न ये है कि आप घूमने तो गए होंगे, भारत की कई जगह पर घूमे भी होंगे, कहीं कश्मीर, कहीं मनाली या दक्षिण भारत में, या कहीं तो घूमे होंगे। जहां भी घूमने गए वहां पर सामान्यतः ऐसा होता है कि फोटोग्राफर कुछ कपड़े अपने पास रखते हैं, उन्हें आप ऊपर से पहनते हैं, फिर आपकी एक फोटो खिंच जाती है और उसे यादों के तौर पर आप अपने पास सहेज कर रखते हैं। हुआ होगा ना, ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आपने पहनी थी कभी और उसके साथ फोटो खिंचाई थी, भारत के या विदेश के कहीं भी आप गए हो घूमने के लिए और वहां की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचाई हो आपने, आपके परिवार में किसी ने, तो जरूर साझा कीजिएगा और बताइए अगले गीत के गीतकार कौन है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ और आप सबने सही पहचाना आनंद बख्शी के बोल। अब एक रोचक जानकारी इस फिल्म को लेकर इसकी ड्रेसेस को लेकर मिली कि इस फिल्म के जो कपड़े हैं लुक्स हैं उनको मुख्य रूप से राज कपूर ने खुद ने डिजाइन और स्टाइल किया था पर इसमें इनका साथ करने वाले बिन रामानी जिन्होंने वार्डरोब स्टाइल सजाई थी सत्यवान और बीआर लक्ष्मण इसके टेलर थे और उन्होंने पूरे इन ड्रेसेस को बनाया था। कितना दिमाग और कितनी सोच लगती है एक फिल्म की एक ड्रेस को बनाने के लिए, ये भी अद्भुत कला है अपने आप में और इस कला को भी हम सब याद रखते हैं और जब हम याद रख ही रहे हैं तो हमें याद है कि हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था और वो प्रश्न बड़ा प्यारा सा था, बड़ा रोचक सा था कि आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर खिंचाई है क्या। तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए कि वो एक बार शिमला गई थी बहनों के साथ फोटो खिंचाई थी, वह उनके पास में है, कोई असम घूमने गया था तो फोटो खिंचाई थी उसे संभाल कर रखा है, कश्मीरी लिबास में 300 रुपए के फैशन के साथ रोजी रोटी भी चलती है और उन्होंने वहां जाकर फोटो खिंचाई थी, क्या बात है। मणिपुर में भी फोटो खिंचाई हमारे एक श्रोता ने, उनकी जेठानी किसी की जेठानी कश्मीर गई थी तो वहां के कपड़े पहनकर उन्होंने फोटो खिंचाई और पर्स वहीं भूलकर आ गई जो कि उन्हें बाद में मिला नहीं, इस बात का जिक्र भी वो कर रही है। उसके साथ ही हमारे श्रोता बताते बहू जापान गई थी तो वहां की पारंपरिक पोशाक किमोनो में फोटो खिंचाई थी, वही पोशाक जो आशा पारेक ने सायोनारा वाले इस गीत में पहनी थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी दी, कहते हैं बॉबी के इस गाने में अकार्डियन जो है वो स्वर्गीय सुमित मित्रा ने बजाया था। जी बहुत रोचक जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता ने बताया कि छठी कक्षा में थे तब उन्होंने बॉबी देखी थी और श्रोता बता रहे हैं कि संदर्भ मुझे याद आता है जब बॉबी पिक्चर लगी थी तो ये लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि बॉबी देखी या नहीं, लोग ये पूछ रहे थे कितनी बार बॉबी फिल्म देखी। बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता ने किसी ने कश्मीर में फोटो खिंचाई है और किसी ने बहुत सारी चीजें बताई हैं तो बताया बहुत सारी बातों को। उन्हें एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा ड्रेस सैनिकों का लगता है, उन्हें देखते ही अपने आप हाथ सैल्यूट करने लग जाते हैं।

बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि डल झील में उन्होंने फोटो खिंचाई थी, और हमारी श्रोता बताती हैं बॉबी फिल्म का याद ना, इसकी ड्रेस मैंने और मेरी दीदी ने एक बार बनवाई थी। नोट बैंक की टॉप पहनते थे, स्काउट पहनते थे, और बड़े फोटो भी उन्होंने इस बात को लेकर खिंचाई है। तो ये सारे हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं, और इन श्रोताओं की उत्तरों के साथ में हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हाँ, फैशन हर वक्त बदलता रहता है, और स्कूल कॉलेज भी मैं भी बहुत फैशनेबल रहे हैं। वो बड़े बाल रखते थे, स्टाइलिश कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, कई बार स्कूल में गुरुजी से पिटाई भी होती थी। हाँ, वो दौर बड़ा अच्छा था जब गुरुजी पीटा करते थे, और हमारे गुरुजी तो कहते थे गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम, शायद आती होगी, इस बात से ऐसा हम मानकर चलते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फैशन कभी पुराना हो नहीं सकता, फैशन एक शब्द है। और उसके साथ में उनका उन्होंने ब्लाउज की बड़ी अच्छी वो बताई है कि पहले पफ वाली बाह और जो दादी नानी पहनती थी वो वाले ब्लाउज अब फिर से आ गए हैं। हाँ, कॉलेज में पैरेलल पहनते थे, प्लाजो पहनते थे, अब वापस आ गए हैं। और रेखा की दो चोटी वाले बालों की स्टाइल बहुत लोकप्रिय है। जी, इतनी अच्छी बातें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अब एक बात और हमारे मन में आती है कि जो कपड़े होते हैं वो कभी कभी बड़ी तरीके से दिखा देते हैं। जब रंगमंच में आप होते हैं या फिल्मों में होते हैं तो कपड़े आपकी स्टाइल को बताते हैं कि अगला मूड क्या है। अब हम अगर अगली फिल्म का ये गाना ले लें तो इसमें जो कपड़े हैं उन कपड़ों को मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है, और उन्होंने पहले जो एक्ट्रेस है यानी हीरोइन जीत यानी करीना कपूर के कपड़ों को बड़ा बेफिक्री वाले कपड़ों में दिखाया है, और थोड़ी देर बाद जब उनका दिल टूट जाता है तो सलवार सूट में दिखाया है। कपड़े भी आपकी संजीदगी को दिखा देते हैं। वैसे ही अभिनेता आदित्य यानी शाहिद कपूर को भी पहले बड़े संजीदा कपड़ों में और बाद में बेफिक्री में दिखा दिया है। तो ये दोनों चीजें आपके मूड को भी यानी आपकी फिल्म की कहानी को भी दिखाते हैं, तो कपड़े कुछ इस तरह से दिखाते भी हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला ये गीत, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है। और एक बात और, सबसे सुकूनदायक वस्त्र कौन सा है जो पहनकर आप अपनी पूरी जिंदगी रह सकते हैं? सबसे सुकूनदायक वस्त्र आपका कौन सा है? अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए, तो हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे हमें सलवार सूट में बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है। आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसमें आराम मिलता है, बताइएगा।

हम सुन रहे थे जब वी मेट फिल्म का यह गीत इरशाद कामिल के बोल प्रीतम के संगीत के साथ, और हमने आपसे पूछा किसके गायक कलाकार कौन है, आपने सही पहचाना उस्ताद राशिद खान। और इसके साथ हमारे श्रोताओं से हमने एक और प्रश्न पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जो बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बड़ा सुकूनदायक होता है तो वो आप पहनते हैं। तो हमारी श्रोता लिखती हैं कि उन्हें हल्के रंग की सूती साड़ी जो है वो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही कोई लिखता है कि हाई हील वाले जूते हीरो जूते पहनते थे वो उन्हें बहुत पसंद थे, उन्होंने मंगाए भी थे, जिप वाले जूते, हाँ एक चैन वाले जूते हुआ करते थे, अभी भी फैशन में है, लड़कियां पहना करती हैं उस फैशन को आजकल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुकून और आरामदायक जो है वो साड़ी ही लगती है और उनके ऊपर भी अच्छी लगती है। वैसे एक बात कही जाए तो भारतीय महिलाओं के ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, सुंदरता, बड़ी सुंदरता के साथ दिखाई देते हैं। उसके साथ कई लोगों ने साड़ी को बोला, किसी ने कुर्ती प्लाजो को बोला। जब ही मैट में करीना कपूर ने पटियाला सूट पहना है जो देखते बनता है, जी बिल्कुल। कुछ हमारी एक और श्रोता लिखती है, कुछ कुछ होता मैं भी, काजोल ने शुरू में डंगरी पहनी और बाद में खूबसूरत साड़ियां, मूड के मुताबिक उसको पहना गया था। जी बिल्कुल, यही तो बदलाव दिखाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, ये बात तो कई लोगों ने लिखी कि सफेद कुर्ता पजामा और बिल्कुल ढीला, पहनने में बहुत सुकून होती है, पर गंदा भी तो बहुत होता है ना पर ठीक है, सबकी अपनी पसंद है। लॉन्ग टी शर्ट और पटियाला वाला फैशन इससे ही आया था। हमारे कुछ श्रोताओं का ऐसा कहना है कि उनका कोई गीत सुनने में नहीं आया, तो मैं क्षमा चाहूंगी, सुनते जाइए, ये गीत भी तो अच्छे ही हैं, कभी कभी ऐसा भी होना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें गाउन पहनना अच्छा लगता है लेकिन किसी और के सामने जाना अच्छा नहीं लगता, गाउन उन्हें बड़ा कम्फर्टेबल लगता है। जी बिल्कुल, हल्का फुल्का सा वस्त्र होता है। कोई अपनी पत्नी के कपड़ों के बारे में बता रहा है कि उन्हें सलवार सूट पसंद है, और कोई अपने बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है लुंगी अच्छी लगती है पहनने में, तो किसी ने बताया बनियान और वो पट्टे वाला हाफ पैंट जो होता है वो लोगों को पसंद आता है, किसी को सूती कुर्ती और लेगिंग पसंद है, तो किसी को एक लोअर टी शर्ट में वो किसी भी फैशन में किसी भी कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें लोग बता रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि उनका विवाह जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ससुराल भी वहीं है, तो उनकी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ गए थे और वहां बहुत सारी फोटो खिंचाई थी जिसका उन्हें याद है। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे एक समय था जब ग्राहक डिजाइन देखने के लिए फिल्म दिखाने के लिए आता था और कहता था ये वाली डिजाइन बना दो, यानी हमारे जो कपड़े सिलने वाले थे उनको फिल्में देखनी पड़ती होंगी उस समय पे, क्योंकि वो डिजाइन बनानी होती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमारे श्रोता लिखते हैं। ऋषि कपूर की स्वेटर और देवानंद की मफलर का फैशन लाकर छा गए थे। जी बिल्कुल, और देवानंद के तो कपड़ों पर बैन भी लगा था, शायद ऐसा कुछ किस्सा भी सुनने में आता है, शायद आपको भी पता हो, किसी को लोअर टी शर्ट में आराम मिलता है और किसी को शर्ट में, किसी को सलवार कुर्ता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, हर किसी का अपना अलग विधान है कि उसे ये पसंद है। और अब हम चल रहे हैं आज की शाम के, आज के इस कार्यक्रम के कुछ अंतिम गीतों की तरफ, और ये अगला गीत आप सुनिए और बस बता दीजिए ये कौन सी फिल्म से है। और इस फिल्म के बारे में एक बड़ी रोचक सी जानकारी हमें कहीं से मिली थी तो वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि इस फिल्म के लिए, चांदनी के लिए भी कपड़े जो बनाए थे भानु अथैया ने बनाए थे, और नीता लुल्ला ने भी इसमें बहुत मदद की थी उन कपड़ों को बनाने के लिए, और बड़ा स्टाइल फेमस हो गया था, मतलब वो बड़ी अच्छी साड़ियां थी और लोगों ने उस समय बहुत पहनी भी ये साड़ियां। चलिए सुनते हैं इस गीत को और बताइएगा ये इस गीत के संगीतकार कौन है, नाम पूरा लिखिएगा संगीतकार का।

और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है, परंतु हम आपके साथ वो साझा करना चाहेंगे जो आपने बताया है जी। हमने पूछा था कि इसके गीत संगीतकार कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये दोनों बातें आपने हमें बताई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज के दिन हमने बहुत सारी फैशन डिजाइन और इन सब की बात की। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले तो लड़कियां पैसे भी देती थी कि जाकर आप यह फिल्म दिखाइए मास्टर जी और फिर वैसा कपड़ा बना दीजिए, तो ये इतनी अच्छी रोचक जानकारियां हमें मिली, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। सदा मंगल हो, नमस्कार, प्रणाम, सदा खुश रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902 और चौथा नंबर है +99932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: चार महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गोल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आजमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स हैं।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केन्द्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
4: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सह अध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। साथै हामीलाई 103 मेगाहर्जमा एफएम कञ्चनजंगा मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, अब हामी सुन्न लागेका छौं दोर्जी छिरिङ अनि साथीहरूको स्वरमा रहेको सिक्किमे भोटिया लोकगीतहरू।

0: श्रोता सुनिरहनु भएको थियो सिक्किमे भोटिया लोकगीतहरू। हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। अबको केही क्षणमा आकाशवाणी कुदिले केन्द्रबाट सम्प्रसारण सुनाउनेछौ हिन्दी अनि त्यसपछि अंग्रेजीमा समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया। मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है। ईरान में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए सिरे से बातचीत के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। श्री रूबियो का संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे खाड़ी सहयोग परिषद के अधिकारियों से भी मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के बारे में जानकारी देंगे। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले में जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुरुद्दीन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवाकर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनगिरी सिरी जिले के में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के यजाली क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 72.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन के दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। हैदम शिलेमा चानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की भूमिका निभाएंगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको में ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

राम राम, नमस्ते जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन फरमाशी गीतों का कार्यक्रम। और क्या हाल है आपका? पूछो जरा, पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है जी। इस गर्मी में तो ऐसा ही होता है। तो फिर आप वो ORS के घोल ले रहे हैं ना, जो इतना ज्यादा प्रचार प्रसार में होता है, सरकार कहती है लिया करें। मुझे लगता है किसी भी कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा अच्छा है ना, एक बोतल लो, उसमें एक पैकेट डालो और सारा दिन अपने साथ रखो। और अपनी शख्सियत भी कुछ ऐसी बनाओ। कैसी? ORS जैसी? नहीं, मतलब नमक जैसी। देखो, नमक जब खाने में होता है ना, कोई उसका कदर नहीं करता, पता नहीं, लेकिन नमक एक दिन खाने में ना हो तो उसकी कमी खलती है ना। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं मन भावन, रूमी मलिक के साथ स्वागत है।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर मनभावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। आपके ढेर सारे ईमेल्स आ गए हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। हाँ जी, सतीश अनेजा जी लिख रहे हैं, रूमी बहना जी प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है, एफएम गोल्ड के लिए बेशुमार मोहब्बतें, बहुत बहुत शुक्रिया। बोधराज खोरवाल जी, किशन वंजानी, कौन कौन है हमारे साथ, देखो अटेंडेंस शुरू हो गई है ना, मेहर अरोड़ा, विजय सुरलकर, हरजिंदर सिंह भाटिया जी, आप इतनी लंबी ईमेल्स बार बार फॉरवर्ड करते हैं, उसमें एंड में लिखते हैं कोई भी गाना चला दीजिए, फिर मैं आगे से आपका नाम नहीं लूंगी, यू हैव टू वर्क हार्ड है ना, आपको गाने का नाम देना पड़ेगा। सोहेल शेख क्या लिखते हैं, सलाम नमस्ते वेलकम, रूमी दीदी आपके बोलने का अंदाज लाजवाब है, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, क्या बोला मैंने। भारत भूषण, गुड आफ्टरनून रूमी वाले जी, आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल आई लिसन टू योर मेलोडियस वॉइस, बिलीव मी व्हेन यू इंक्लूड माई मेल इन द प्रोग्राम आई एम ऑन क्लाउड 9 as if I have received Padmashri award. Oh, this is so brilliant. I think I should take a picture of this email and keep it, है ना? जब मैं 80 साल की हो जाऊंगी ना, तो मैं ऐसी ऐसी ईमेल ना पढ़ा करूंगी और बड़ा खुश हुआ करूंगी, देखो ऐसे दीवाने होते थे मेरे। भारत भूषण जी, आई वॉज अवे, यस मैं हिमालय गई थी, मैं उत्तरकाशी गंगोत्री में थी, तो इसलिए मुझे काफी ज्यादा समय लगा है ना, वहां पे हमने पढ़ाई भी करी, हाँ हाँ भाई हमने वेदांत पढ़ा था। अक्रम हुसैन प्रिंस, विजय सुरलकर हो गए ना, तुलसी मस्किन जी, अच्छा अगले पेज पे चले, गोविंद वैष्णव, राजकुमार डूडी जी, गुरमीत सिंह जी, राधेश्याम देवानगन, अच्छा इसके बाद आप एक जना इतनी इतनी ईमेल्स भेजता है, इट रियली डिस्ट्रॉयज द फ्लो, रियली है ना, बच्चे थोड़ी हैं आप, एक ही मेल भेजिए ना। दीपेश जी, अनिल कुमार गवानकर, विट्ठल यादव, मैंने एक बड़े कमाल का अभी मैसेज पढ़ा कि ये हाल तो तब है जब हमें ये पता है कि सब कुछ यहां छोड़ के जाना है, मतलब अगर भूल से आपके कोई नाम ना लिया गया तो देखिए कितना हो हल्ला मचेगा। अनिल कुमार गवानकर, राम नरेश चिक, शमशुल कमर राही जी है ना, अच्छा अब इसके बाद में आगे देखें किसने, अहमद फूलवाले जी और जगन्नाथ पटेल, टेक बाय विदित, अच्छा रजक मोहम्मद, उदय भानपाल है ना, आई वांट टू टेक न्यू नेम, सुधाकर जाधव, सरफुदी अंसारी, धर्मेंद्र चीपा, कमलकांत गुप्ता, नीतू मल्होत्रा जी, नितेश देवांगन, तनुजा देवांगन, अच्छा उसके बाद में एक और मैसेज हमने देखा था अभी, बबलू ठेकेदार। अच्छा और सुधाकर जाधव, इसके बाद में रास क्रिएशंस ने हमें एक मैसेज भेजा कि आप हमें गीत सुनाइए, कौन सा गीत सुनाइए, सुनील पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बबलेश पंवर जी भी, इन्होंने कहा कि हमें आप ये गीत सुनाइए, हमने कुछ निकाल के रखा था, हमने नहीं निकाल के रखा था, देखते हैं एक सेकेंड, लेट मी सी, सतीश अनेजा जी ने हमें बोला कि सौतन फिल्म का गाना सुना दीजिए, कौन सा वाला, शायद मेरी शादी का ख्याल, एक मिनट रुको जी, एक मिनट पहले तो गाना निकाल लिया जाए है ना। दिस इज व्हाट हैपेंस, एक मिनट, चाय मतलब मैं क्या बताऊं आपको, कलयुग का अमृत, हम छोटे होते थे ना तो वो आते थे, क्विज आती थी छोटी छोटी, तो कलयुग का अमृत लिखा होता था चाय, तो हम अपनी मम्मी के पास दौड़ के जाते थे, मम्मी मम्मी देखो आपको चाय इतनी पसंद है ना, इसे कलयुग का अमृत कहा गया है। नहीं चाय बहुत काम आती है सचमुच में, हम तो हिमालय में भी चाय पी रहे थे। चलो जी ये अच्छा सा गाना सुनते हैं, हैप्पी सतीश जी, विमला जी,

हाँ सचमुच में अंगा छत्रपति शाम्बाजी संभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश कहते हैं कि इनको अब्दुल्ला फिल्म का गीत सुनना है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है हसी। अच्छा सांबाजी नगर से याद आया, आपको पता है मैं हमेशा ही सोचती थी कि सांबार है ना, सांबार उसको सही प्रोनाउंसिएशन यही है जो दक्षिण भारतीय करते हैं कि दक्षिण भारत में इजाद हुआ होगा। पर आपको पता है शिवाजी के पुत्र सांभाजी को इस तरह का ऐसा तरल जो है ये पसंद था जिसे सांबर, उनके नाम पे सांबर बना है। मुझे नहीं पता था ये वाली बात अंटिल आई रेड इट। इसीलिए मैं कह रही हूं रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ फोन न देखा करें, रेडियो सुना करें और रीडिंग किया करें और रूमी को सुना करें। आर आर आर, आर।

फरमाइश है नीटू मल्होत्रा जी, लक्ष्य लाडो कोयल जी की, ये क्या लिख रहे हैं नमस्कार जी, आपको मान्य योग्य आरजे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें योग्य होने का दर्जा दिया ये सुनना चाहते हैं गीत, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। दुआ हर एक के लिए करनी चाहिए सचमुच में, जिसकी कल्याणमय भावना होती है ना सबके लिए, उसके बढ़ोतरी को दुनिया रोक नहीं सकती। लोग अचंभा करते हैं कि अरे गिर गिर के भी उठ गई, आगे बढ़ गई, सफल हो गई, तो ये अपना ध्येय होना चाहिए, है ना। हमेशा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है ना, अगर आप अपनी प्रगति पे लग जाएंगे ना तो बहुत कल्याण करेंगे। इस बारे में और बातें होती रहेंगी, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
4: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
5: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
5: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

एफएम गोल्ड और मिली मुझे एक मैसेज, फिर मिली संगीत सुनना चाहते हैं, आए तुम याद मुझे। अनिल मोहन जी, उषा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। तो हम ये गीत सुने।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
1: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
2: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
1: जी हाँ, दिल्ली

0: का साथ।
1: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
2: गर्मियों में मीठा रस खाना चाहिए, कई बार मैंने आपको बताया, इसीलिए आम रस, आम पन्ना, आम खाइए और बनिए खास। ये अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश है किशन वंजानी जी की। इनके प्रिय मित्र हैं सुमन महाजन जी, इनको डेडिकेट करना चाहते हैं। ये गीत कौन सा? अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी। अच्छा जी, ये हैप्पी बर्थडे सॉन्ग होता है किशन जी, है ये क्या तरीका है? चलो खैर, अच्छा लगता है, हो सकता है इनकी मित्र को गीत पसंद हो ना, ऐसा भी हो सकता है। हैप्पी बर्थडे सुमन जी, हमारे भी बर्थडे वाला मंथ आने ही वाला है, जुलाई आने ही वाला है।

बिट्टू भाटिया जी, ताज मोहम्मद जी, मोहम्मद सईद अवासी जी, सुरेश राठौड़, ताज मोहम्मद, फग्गू राम यादव जी, प्रकाश वर्मा जी, उदयभान पाल जी, ये सब हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तम सिंह जंगेल जी, उमेश कुमार जी, मेहर अरोड़ा जी, विजय सुरलकर जी, दिग्दर्शन कौर जी, हाउ कुड आई फॉरगेट दिग्दर्शन कौर जी। मैं ये सोच ही रही थी, इन्होंने बोला कल निर्जला एकादशी है, ये लिख रही है आप भी व्रत रखेंगे हम भी व्रत रखेंगे। और कोई गीत ये सुनना चाहती है, हरि भक्ति का गीत, सब कुछ में मैं तो हरेक में हरि देखती हूँ दिग्दर्शन कौर जी। और क्या सब कुछ, ये सारे गाने क्या है, ये मेरे हरि के ही तो है, विष्णु भगवान की माया से तो चल रहा है। माया का जो उपाधि है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए रिजर्व्ड है, मायापति है ना। तो आइए ना सुनते हैं ये गीत, अजीब दास्ता है ये।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
1: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
2: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
1: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
2: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
3: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
4: आप सुन रहे हैं मन भावन आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। हमारे साथ हैं जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो, पर्ल और विलिस। और ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये गीत सुनेंगे जो मन भावन की आखिरी पेशकश होगी। पर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इसके बाद भी हम आपको गीत सुनाएंगे, 5-10 से गाते गुनगुनाते भी होगा। तो रहिए हमारे साथ आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार फौजी दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सुबी कपूर और एक बार फिर मैं आप सबों का आपके ही पसंदीदा कार्यक्रम स्वरे गाथा में तहे दिल से स्वागत करती हूं। फौजी दोस्तों, आज मैं स्वरे गाथा कार्यक्रम में आप सबों को एक ऐसे सफर पर ले चलूंगी जहां रेडियो की तरंगों पर टकराएंगे दो दौर, एक पुराने जमाने के सुरीले गीत तो दूसरी तरफ आज के जमाने के ट्रेंडिंग हिंदी गाने। तो आइए शुरू करते हैं सुरों का सफर तब और अब। जैसा कि हम सब जानते हैं, संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है। जब भी हम अतीत की ओर झांकते हैं तो पुराने जमाने के गीत हमारे मन में मधुर स्मृतियां जगा देते हैं। वे गीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कारों और संस्कृति का आईना भी है। सन 1964 में आई फिल्म वो कौन थी के सुपरहिट गाने लग जा गले लता मंगेशकर द्वारा स्वरबद्ध आज भी हमें भाव विभोर कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम के पहले नगमे को इसी मधुर गीत के साथ।

0: पुराने जमाने के हिंदी फिल्में गीत भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम अध्याय माने जाते हैं। यह वह दौर था जब गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि कहानी का आत्मा हुआ करती थी। हर गीत का एक अर्थ, एक भाव और एक संदेश होता था। आज की तेज रफ्तार जिंदगी भी जब हम पुराने गीत सुनते हैं तो मन को शांति और सुकून मिलता है। यही कारण है कि पुराने जमाने के गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने वे अपने समय में थे। उस जमाने के गीतों की सबसे बड़ी विशेषता उनके भावपूर्ण बोल थे। इन गीतों में प्रेम, विरह, देशभक्ति, त्याग और सामाजिक मूल्यों को बड़ी सादगी और गहराई से प्रस्तुत किया जाता था। सन 1960 में आई फिल्म चौदहवीं का चांद में गायक मोहम्मद रफी साहब ने प्रेमिका की सुंदरता की तुलना चांद से ही कर डाली। इस गाने में शुद्ध उर्दू, हिंदी भाषा और मधुर स्वर ने वह कमाल बिखेरा कि गीत अमर हो गए। तो फौजी दोस्तों, कार्यक्रम की इस पड़ाव में आइए सुनते हैं मधुर गीत।
1: प्यार में जीना, प्यार में मरना, कसम प्यार की होती है। जान का क्या गम, जान से बढ़कर कसम।

के मशहूर गीतकार जैसे शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी, मजहूर सुल्तानपुरी, कैफी आजमी ने शब्दों को कविता का रूप दिया। संगीतकारों रागों पर आधारित धुनें तैयार करते थे। नौसाद, मदन मोहन, आरडी वर्मन और एसडी वर्मन जैसे महान संगीतकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक धुनों को फिल्मी गीतों से जोड़ डाला। इन गीतों को सुनते समय शब्द और संगीत का सुंदर संतुलन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पुराने जमाने के गीतों की आत्मा थे। पुराने जमाने गीतों की आत्मा थे उस दौर के महान गायक और गायिकाएं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले की आवाजों ने गीतों को अमर बना दिया। चाहे मोहम्मद रफी की दर्द भरी आवाज हो या किशोर कुमार की चंचलता, हर गायक की अपनी अलग पहचान थी जो सीधे श्रोता के दिलों तक पहुंचती थी। सन 1973 में आई फिल्म ब्लैकमेल का यह गीत पल पल दिल के पास किशोर कुमार द्वारा स्वरबद्ध सरल धुन, मधुर संगीत और भावनात्मक गहराई ने इस गीत को अमर बना दिया। तो फौजी दोस्तों, आइए सुनते हैं इसी मधुर गीत को किशोर कुमार की।

हाँ जी दोस्तों, अब थोड़ी चर्चा आज के आधुनिक युग के गीतों की करते हैं। आधुनिक जमाने के हिंदी गीत आज के युवा मन की अभिव्यक्ति हैं। तकनीक, सोशल मीडिया और तेज जीवन शैली ने संगीत को नया रूप दिया है। आज के गीत केवल फिल्मों तक सीमित नहीं बल्कि मोबाइल, रील्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लोकप्रिय हैं। आधुनिक गीतों में प्रेम, दोस्ती, आत्मविश्वास और जीवन के संघर्ष को सरल और सीधे शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। आज के दौर के गीतों में आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रमुख रूप से दिखाई देती है। ये गीत युवाओं को कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखने का संदेश देती है। सन 2013 में आई फिल्म भाग मिल्खा भाग का यह गीत जिंदा है तो सिद्धार्थ महादेवन द्वारा बखूबी निभाई गई। गीत ऊर्जावान गायन और प्रेरणादायक बोल तथा संघर्ष की भावना को दर्शाती है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं यह मधुर गीत भाग मिल्खा भाग से।

आधुनिक गीतों में सामाजिक विषयों और नए प्रयोगों को भी स्थान दिया गया है। तकनीक और संगीत का मेल इन्हें वैश्विक पहचान दिलाता है। आज के गीतों में दोस्ती और रिश्तों को भी नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। ये गीत युवा पीढ़ी की सोच और भावनाओं को दर्शाती है। पुराने जमाने के गीत और आधुनिक दौर के गीत दोनों ही अपने अपने समय की सोच, भावनाओं और जीवन शैली का प्रतिबिंब है। यदि पुराने गाने हमारी जड़ों से जुड़े हुए हैं, तो आधुनिक गाने हमारे पंख हैं, जो हमें वर्तमान और भविष्य की ओर ले जाते हैं। दोनों के बीच तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि संगीत कभी स्थिर नहीं रहता, यह समय के साथ बदलता रहता है, पर उसकी आत्मा हमेशा बनी रहती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि पुराने और आधुनिक गीतों के बीच किसी को श्रेष्ठ ठहराना उचित नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पुराने गीत हमारी संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत है, जबकि आधुनिक गीत समय की धड़कन। तो फौजी दोस्तों, इसी क्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिरी नगमे को, फिल्म कल हो न हो से सोनू निगम की।

तो फौजी दोस्तों, आज बस इतना ही। अब मुझे सुबी कपूर को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे एक रोचक और तथ्यपूर्ण विषय के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।

Amen.

Sayyid,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरूपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र

0: में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताहरू, हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। स्टुडियोको घडी अनुसार समय यति बेला साँझको 6:05 भइसकेको छ। अब यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ ग्रामीण कार्यक्रम अन्तर्गत मौरी पालन विषयलाई लिएर प्रगतिशील कृषक धनमोती राईसँग गरिएको अन्तर्वार्ता।

0: बीजेपी डेजोंग नदी की छोकचो डीआर थापा छो दा नदी चिख्याप ठोंगचे अर्जुन राय छो नि थारिंग ई युरको लेंचेन यानी यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत छो दा यमसी दिल्ली सारपोलो डेजोंग की युलकोर लिरिक यारगे दा कॉम्फिल तंगथाप की थेनले क्योदर नांगदु कुछाप छोकपचु की ग्यागर की सिलेन नरेंद्र मोदी छो डेजोंग लो जिकोर छेम्बे थीका प्लेजोंग दी नदी फिलो ले युकोबो केपचिक छेम्बे थी छोंग दी डेजोंग जुंग लो इ जुंग होले टूरिज्म सेक्टर होलो ग्याप्यो नांगशी इनसी सुंगदु इ लेंचिन छोगी डेंजोंग की युगोर की सेमशु दिलो न्यूजिन नांग ये पथंग लेंखंग गिंग होले मुथी ग्याप्यो चु नांगजुई शेलजी नांगे 37 माउंटेन डिवीजन की जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल यांग ने माक्ची बोंपु राजेश मिश्रा छोगी डेंजोंग की सिक्योंग ओम प्रकाश माथुर छोलो थारिंग राजभवन नांगशर शिक्षित की छामडी शुभबे छोगदु नांगशालो खोंची तेनसेन मिशन सात भावना तंग ग्यागर मांगमी की लेरिम रनभूमि दर्शन सुदेमी तेंगलो यारगे तंगथप की कामिल ग्याचर नांगबोबे दिले सिक्योंग छोगी ग्यागर मांगमी योंलो खोंगी निंगतोप तंग सेमशुक सुंक्योप डेटा नांग येपो तेंगलो नांगजी नांगबोबे दिलो मुतिति खोंगी सोशल एंड पब्लिक वेलफेयर तेंगलो नांगजी नांगशिन होंखेन निमना राजभवन होले रोग्राम तंग ग्याप्यो नावे मेंदिन शुभबे सोची लेम्पो प्रेम सिंह तमंग छोगी गोठी ओक नेकोर दंग खेडुप लेखोंगी लिंचेन सिरिंग टी बुटिया छोगी शुंगदिल की छाले थादा की थेले ई ऑफिस एप्लीकेशन ठाग्या इथोकले टाशिलिंग टुंगी खांग नांशर उजे नांगे ई ऑफिस सिस्टम दिलो ngote नावे कामलो लेम्पो छोगी दे तिसुंगदु
1: टूरिज्म एण्ड सिभिल एभिएसन डिपार्टमेन्टको एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम भर्खरै हामीले गरेको छौँ र यसमा के थियो भन्दाखेरि ई अफिस प्रड्युस गरेको छौँ मेरै अफिसमा उद्घाटन गरेको छौँ
0: इन्टरनेसनल डे एगेन्स्ट ड्रग एब्युज एन्ड इलिसिट ट्राफिकिङ गी थितेन निम दिन नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत गी पहचान गी जेजी नाओ लो दिनठा रिंग समी थीतेन दी पाक्योंग जोंखा हो लो सुंगसी नांगे पाक्योंग जोंखा की जोंपेन चामकु परी बिश्नोई छोगी पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ना सिंगजुक लेगुल यांग ने प्लांटेशन ड्राइव उठी नांग बबे सिंगजुक लेगुल दी जोंसी जोंदंग दिल्ली छोखा की न्यामरूप की थामचा सेम्पोदंग चिछो दिजु ड्रग फ्री सोसाइटी जोथाप की छाजी इनसे छिनशिनी सोरेंग जोंखा की ऑफिस ऑफ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लेखुंग ले थारिंग दाथो चिक तेम्बे नांगशालो डेंजोंग जुंग रोड एंड ब्रिजेस डिपार्टमेंट सोरेंग की दारामदिन साकी की एनडीपी लामथो लो येपे छुक्योंग तेंगी चा की सांपो सोथाप की यो ब्याम सुक्षिनी सेल्टा नांगसेल्टार की छिदा ठुकई से खेची गु जादावी निम सोरेंग जोंखा दारामदिन साकील की एनडीपी लाम 8CH27-28 दिचुए लाम दिलो कागोक नांगदुइन दिले डिलगोबो दिचुलो लाम जेमेन गीति छेम्बो नांगनासे शु केन दिचुए थोले लेंगे चुलो जो मादेबो जो एशे दे गोंठे मानांसे खोंगे शुदु दाउ पिरु की छापो शुक्चेन दी की सने ओमचुंगी नेदम ना साछुरी बाक्ति लेक्षिप गेजिंग की सोरो लाम छेदी यनसेन तारगी इना छापो शुक्चिन क्यापो क्याप्सिम दी प्याती खेनले दो दिचु पोक बाओं दी दंपा दी की लांकोर गुलाम की सोरो लाम जो काक्सारी लाम काक्षे दी प्याती ड्रिकोबो दिचुलो कांगेल बम्पुची जो दू दिले लुंठीका गांतुले लपी निशुल नारो शुजो भाई थुजी छी

0: समसामयिक विषयको कार्यक्रम सामयिक चर्चामा अहिले सुन्नुभयो वार्ता अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरूद्ध दिवस एक चर्चा वार्ताकार हुनुहुन्थ्यो डाक्टर पारसमणि दंगाल यो आकाशवाणी गान्तोक हो
1: श्रोताहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली भाषामा कार्यक्रम सामयिक समीक्षा हामी मिडियम वेबको 213.67 मिटर अर्थात 1404 किलोहर्जमा आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई 103 मेगाहर्ज एफएम कञ्चनजंघा तथा न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम हेलो श्रोताको पहिलो भाग
2: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं यसका साथै श्रोताले हाम्रो यस प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंघा साथै न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ त श्रोता समय बेलुकीको 7:05 भइसकेको छ भने हामी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं यहाँकै फोनमा आधारित रमाइलो कार्यक्रम हेलो श्रोता त आउनुहोस् कुरा गरौं आजको पहिलो कलरसित हेलो नमस्कार आकाशवाणी गान्तो
3: नमस्ते दिदी
2: नमस्कार जी कौन कहाँ से बात कर रहे जी
3: गंगाधर सावंतकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ दीदी
2: शक्तिमान वाले गंगाधर जी ना
3: शक्तिमान वाले
2: आज तो उड़ते उड़ते कार्यक्रम में पहले आ गए आप
3: जी जी क्योंकि बहुत ट्राई करा पिछले हफ्ते में नहीं लगा
2: इसीलिए तो
3: हाँ पहले से कोशिश किया दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका
2: इसीलिए तो आज कार्यक्रम में फर्स्ट हो गए शक्तिमान बनकर आ गए
3: हाँ बिल्कुल शक्तिमान बन गए
2: कैसे है गंगाधर जी
3: बस थोड़ा गर्मी से छुटकारा मिली थोड़ा बारिश हुई
2: तब तो थोड़ा शांति
3: हुई मैं तो ऐसा गर्मी हो
2: रही
3: थी
2: मैं सुन रही थी मतलब न्यूज में देख रही थी कि उधर आपके यहाँ आप लोग के यहाँ पर बहुत 40-45 डिग्री तक चले गए थे
3: जी जी जी
2: गंगाधर जी आप भी तो एक पिता है ना
3: हाँ पिता तो है
2: जी अभी कुछ दिन पहले

0: ये फादर्स डे गए ना, तो कुछ आपके पिता के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे क्या? क्योंकि माता पिता का बहुत महत्वपूर्ण होता है ना जीवन में, इसलिए
1: जीवन में ऐसा है दीदी पिता का कि घर की परवरिश और मेन बच्चों का संस्कार, बच्चों को अच्छा संस्कार दिलाना ये पिताजी का काम
0: है। ये तो है।
1: हाँ, और बच्चे अपन जैसे करेंगे अपन बच्चे भी अपने वैसे करेंगे,
0: ऐसे ही करेगा। ये तो सही,
1: क्योंकि माँ बाप को कभी भूलना नहीं, कभी आनंद आश्रम में ले जाना नहीं माँ बाप को, वो माँ बाप से तो दुनिया दिख रही है। तो दीदी बच्चों को अपने संस्कार से तो अच्छे बनेंगे बच्चे, और गाय तो कुछ नहीं बनते।
0: मतलब ऐसा है कि पिताजी को, पिताजी के ऊपर है सब जिम्मेवार, पिताजी क्या करेंगे उसी को देखकर बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं ना। ये तो सही बात है। अच्छा लगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले हम फादर्स डे, सब लोग फादर्स डे बोलकर मना रहे थे ना, मगर पिता का जीवन में महत्व क्या है ये बताना जरूरी है ना।
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा गंगाधर जी, आपका विचार बहुत अच्छा है। तो बताइए इसी खुशी में गाना कौन सा सुनाया आज आपको?
1: आप पिताजी के ऊपर बोले
0: जी जरूर।
1: हाँ, खाया मत तक, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा।

0: हेलो आकाशवाणी गान तो
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार जी कौन
1: कहा से बात कर रहा हूँ सुतपा जी
0: सुतपा जी नमस्कार
1: आप कैसे हो
0: मैं ठीक हूँ सुतपा जी कैसी है
1: मैं भी अच्छी हूँ बढ़िया हूँ
0: बढ़िया है घर में सब कैसे है
1: फोन लगकर तो खूब खुशी हो गया
0: ना आज तो जल्दी आ गए जल्दी जल्दी आ गए ना इसीलिए खुश हो गए ना
1: जी
0: क्या काम कर रहे थे सुतपा जी
1: घर में काम कर रहे हैं रसोई घर में काम कर रहे हैं
0: रसोई घर में खाना बना
1: जी।
0: हाँ आज तो बुधवार है मछली बनेगा
1: जी।
0: कौन सा मछली
1: बाप आ जाए तो खाने का लिए
0: बाप रे आप ऐसे बोल देते ना तो मुंह में पानी आ जाता है
1: मोबाइल पे डाल दूंगा
0: हाँ मोबाइल पे डाल दीजिए मछली उधर से उड़ के आ जाएगा
1: जी।
0: मुझे पता है ना आज बुधवार है मछली बनेगा
1: मछली बनेगा
0: जी जी
1: सादा मछली
0: सादा मछली
1: जी
0: इसमें कांटा होता है कि नहीं
1: काटा नहीं
0: काटा नहीं होता है ना
1: ये कलर काटा है
0: तब तो और भी खाने का मन किया कांटा नहीं है तो
1: जी।
0: फिर हो जाएगा ना कांटा लगा तो बताइए सुतपा जी गाना कौन सा सुना है आज
1: गाने का बोल से है आज मैं मुसाफिर है ये गाना सुना दीजिए
0: जी किस किस को सुनाना चाहेंगे
1: दोस्तों का नाम लो पहले तो आपके लिए तुम सबके लिए अनुपमा भट्टाचार्या प्रमोदित चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती आर बी प्रधान विजय सिंह लकेरा अविनाश चली सबके लिए
0: सब के लिए सब के लिए जितना भी है सुतपा जी बोलकर पहचानने वाले सभी के लिए
1: आशिकांत जी के लिए
0: जी जी जी धन्यवाद सुतपा जी मच्छी अच्छे से खाइएगा।

0: हेलो आकाश मणिकांत।
1: नमस्कार मैडम, चुरमी पुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रबान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रबान सिंह जी।
1: जी मैडम, फोन लग गया, बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत दिन का प्रयास कर रहा था, संभव नहीं था लग गया।
0: जी जी जी जी, फोन लगना तो अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है ना, बहुत सारे कॉलर्स जुड़ गए कई राज्यों से।
1: जी, कई राज्यों से फोन करते हैं, ट्राई करते हैं, किसी का लगता है, किसी का जल्दी लग जाता, किसी का देरी लगता है,
0: किसी का लगता भी नहीं है, मगर प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहिए।
1: जी प्रयास से सफलता मिलता है,
0: सफलता मिलता है। जैसे आपको मिल गए, दो तीन हफ्तों से नहीं लगा था तो आज लग गए, आज तीसरे नंबर पर आ गए जल्दी।
1: जी जी
0: जी। इंद्रबान सिंह जी कैसे?
1: ठीक हूँ मैडम, आप भी अच्छी हूँ, मैं भी अच्छा हूँ, पेड़ में हूँ मैडम। मौसम एकदम मतलब बादल भी किया,
0: मौसम तो अभी ठीक ठाक होंगे ना, आप लोगों को थोड़ा गर्मी से राहत मिल गई।
1: धूप किया है मैडम, पानी पी रहा है तो थोड़ा ठंडा ठंडा हवा चलता है, तो उम्र गर्मी रहता है।
0: जी जी जी जी, फिर भी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है।
1: जी मैडम
0: जी। इंद्रबान सिंह जी, आप भी एक पिता है, तो अभी अभी फादर्स डे गया है, तो फादर्स के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे पिताजी के बारे में?
1: जी मैडम, फादर्स के बारे में बोलना कि पिताजी का जो फादर का जो जिम्मेदारी होता है वो सबसे अहम होता है। वो घर के गार्जियन होते हैं, उनके मार्गदर्शन से हमें चलना चाहिए। वो जैसे हमको मार्गदर्शन बताएंगे, सही रास्ता बताएंगे और हम उसी रास्ते से चलना है। और पिता बनने का कर्तव्य होता है पालन करना, ये सबकी जिम्मेदारी पिता का होता है।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात
1: जी
0: जी। तो बताइए गाना कौन सा सुना यार?
1: मैडम गाना बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को फिल्म का नाम याद नहीं, जन्म के बरस अब तो मुझे सर्जन के पास जाना है, गायिका अलका याग्निक। सबसे पहले गीत आपको, केंद्र निर्देशक साहब को, पूरे भारत राज्य श्रोता को, आकाशवाणी गंतव्यों से जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपकी सहेलियों को, आकाशवाणी गंतव्य से जुड़े सभी भाई को हेलो कर दी।
0: जी जी, धन्यवाद धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी कांतो
1: जी, पूनम जी नमस्ते।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा,
0: सिसोदिया,
1: जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया जी, आपके यहाँ पर बगल पर छोटे छोटे बच्चे का आवाज भी सुनाई दे रहा है, मुझे लगता
1: हाँ
0: है आप भी एक पिता ही होंगे।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: जी जी, तो आज मैं इसी के बारे में पूछ रही हूँ ना, तो अभी अभी फादर्स डे मनाए थे, तो पिता का क्या महत्व है और पिता का किस तरह का जिम्मेवारी बनता है, थोड़ा सा बता देना चाहेंगे हमें?
1: जी बिल्कुल, पिता का महत्व है बच्चों को अच्छे पढ़ा लिखा कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करे और अच्छे से अच्छे संस्कार दे ताकि वो आगे बढ़ के अच्छी राह चुने। और कभी भी मतलब ऐसी मतलब बातें ना बताए कि बच्चे को मतलब ऐसा बुरा फील हो और वो किसी गलत राह पर चले। मेरा तो यही कहना रहेगा कि जहाँ तक हो सके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे और अच्छी श्रेणी में लाए, और माता पिता का यही कर्तव्य होता है कि अपना बच्चा आगे बढ़े और नाम रोशन करे।
0: जी हाँ जी, मतलब उसमें माँ का तो भूमिका रहता है, पिता का तो और भी ज्यादा उसमें भूमिका रहता है ना?
1: जी बिल्कुल, बच्चे के पढ़ाई का भी खर्चा निकलना पड़ता है, घर का भी काम करना पड़ता है और मतलब पूरे घर का परिवार का मतलब पिता को ध्यान रखना होता है
0: और फोन भी करना पड़ता है कार्यक्रम हेलो श्रोता में।
1: जी जी बिल्कुल, तो ये तो हमारा नियमित काम हो गया है, आकाशवाणी सुनते रहते हैं
0: जी।
1: और साथ में घर का काम भी करते हैं, परिवार का भी ख्याल रखते हैं, बच्चों को भी पढ़ाई में आगे बढ़ाने की राह बताते रहते हैं।
0: जी जी जी
1: जी, और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट भी करते हैं।
0: जी, तो वही तो एक एडवर्टाइज में बोलता है ना, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, पढ़ाई भी।
1: जी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा लगा प्रेम सिंह सिसोदिया जी का भी, आपके ऊपर भी बहुत जिम्मेवारी है, फिर भी आप हंस हंस के सह लेते हैं, हंस हंस के आगे बढ़ जाते हैं, पिता लोग का यही है।
1: जी बिल्कुल, यही तो है, अगर हम उदास रहेंगे, मन को चिंतित रखेंगे तो फिर भी काम करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि खुश रह के हम भी खुश रहे और औरों को भी खुश रहे। जी बिल्कुल, अगर हम खुश रहेंगे ना तो सामने वाला अपने आप खुश हो जाएगा देखकर हमें।
0: पिता का तो अच्छा लगा ये सुनकर, तो बताइए इसी खुशी में गाना कौन सा सुनाया आज आप?
1: जी, फिल्म का नाम एक है याद रखेगी दुनिया, और गाने के बोले तुझे रब ने बनाया। जी पूनम जी, जी हमारा ग्रुप बनाया हेलो फरमाइश रेडिया एकता ग्रुप, उनके सभी श्रोताओं को डेडिकेट रहेगा। भगवान सिंह परमार, लोकेंद्र वर्मा, आशुतोष अविनाश संगीता जी, केसी सिंह राजपूत, सुनील जी भोपाल से, रमेश टेलर भोपाल से, और आकाशवाणी के पूनम जी जिससे हमारी बात हो रही है अभी।
0: जी जी जी, धन्यवाद, ऐसे फोन करते रहेगा, अच्छी अच्छी बातें बताते रहेगा।
1: जी थैंक यू सो मच।

0: हेलो आकाशवाणी गांतो।
1: हेलो दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: भगवान जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी। और आप बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, आज आपके पास हमारा कॉल मिल गया तो।
0: जी जी जी, दो तीन हफ्ता से नहीं लग रहे थे ना।
1: हाँ दीदी, तीन हफ्तों से नहीं लगा था।
0: जी जी, तीन हफ्तों के बाद आज फाइनली गैंगटॉक आई पहुँचे आप।
1: जी जी
0: देर से ही सही।
1: हाँ दीदी, और आपसे कार्यक्रम तो हम हमेशा सुनते हैं दीदी, कभी भी मिस नहीं करते हैं।
0: जी कार्यक्रम हमेशा सुनते हैं ना।
1: हाँ,
0: यही आप लोग का अच्छी बात है ना, फोन नहीं लगने से भी हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, हमारे कार्यक्रम को इतना प्यार देते हैं, यही आप लोग का बड़ापन है।
1: जी जी जी, जी।
0: क्योंकि कभी बात तो ऐसे होता है ना, मेरा तो फोन ही नहीं लगा, कार्यक्रम सुनना ही नहीं, ऐसा नहीं होता है।
1: नहीं नहीं दीदी, हम तो है ना, हमारा कॉल मिले चाहे नहीं मिले दीदी, हम हमेशा सुनते हैं कार्यक्रम,
0: सुनते रहते हैं ना। तो आप लोग का प्यार ही है, इसीलिए हमारा कार्यक्रम हेलो श्रोता इतना लोकप्रिय हो गया है।
1: बहुत पॉपुलर है पूरे भारत वर्ष में, आपको सुनते हैं कार्यक्रम को दीदी।
0: जी जी जी जी, ये अच्छा लगता है।
1: जी
0: जी, भगवान जी सब ठीक चल रहे हैं ना।
1: जी दीदी, अभी सब ठीक चल रहा है, बरसात हमारे इधर कम कम हो रही है, कुछ जगह पे बुआई हो चुकी है, कुछ जगह पे रह गई है दीदी, जैसे बरसात ज्यादा हो जाएगी तो बुआई करेंगे दीदी, अभी नहीं हुई है हमारे यहाँ।
0: मगर गर्मी से तो थोड़ा राहत मिल गया है।
1: जी दीदी, पूरी तरह से राहत मिल गया है, मेरे यहाँ तो 15 दिन से पानी गिर रहा है, लेकिन कम कम गिर रहा है।
0: अच्छा लगा ये सुनकर फिर। जी जी जी, तो बताइए भगवान जी गाना कौन सा सुनाया
1: दीदी? फिल्म का नाम है कामचोर, और गाने के बोले तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और। और कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे दीदी? केसे सिंह राजपूत जी है, गजराज लोधी जी है, राम बाबू शर्मा जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, राकेश जी हैं शिमला से, बहन संगीता देवनाथ जी, आशुतोष देवनाथ जी, अविनाश तेली जी हैं, और पूरन वर्मा जी हैं, और शिवा लोहट जी हैं, और लोकेन वर्मा जी हैं, और हमारे जो श्रोता सब सुन रहे लाइव, सभी को डेडिकेट रहेगा दीदी, आपको भी रहेगा, कानपुर से पूनम दीदी है, धीरज भाई रबाड़ी है, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी।
0: जी धन्यवाद, सुनाते हैं फिल्म कामचोर से फिर ये गीत।
1: धन्यवाद दीदी।
2: तुमसे

0: सम्मान सेवा करना चाहिए। बाद में तो फिर लोग पछताते हैं कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया,
1: बाद में तो सिर्फ याद ही छोड़कर जाते
0: हैं। हाँ, यादें छोड़ जाते हैं।
1: ये बात तो आपने सही बोला क्योंकि अपने माता पिता जब तक जिंदा है उन लोग का अच्छे से देखभाल करना चाहिए
0: उनको और सेवा करना चाहिए
1: उन लोग के साथ। सबसे ज्यादा अभी तक क्या है कि फोन की वजह से अपने बच्चों लोग माँ बाप से उतना नहीं जुड़ पाते हैं, फोन की वजह से अपने अपने दुनिया में रहते हैं, मगर उन लोगों को भी समय देना चाहिए।
0: बिल्कुल समय देना चाहिए।
1: बहुत अच्छा, बहुत प्यारी बात बता दिया केसरी सिंह राजपूत जी ने। तो बताइए राजपूत जी, गाना कौन सा सुनाया
0: आज? आप वो सुना दीजिएगा, हम साथ साथ हैं मूवी का, धरती पे रूप माँ बाप का, विधाता की पहचान।
1: जी, किस किस को सुनाना चाहेंगे?
0: राम बाबू शर्मा जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं और लोकमेन वर्मा जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, अविनाश जी, थैंक यू राधे राधे।

0: हेलो आकाशवाणी कांत।
1: हेलो नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार जी।
1: बहन जी
0: कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
1: मांगीलाल चंदेल बात कर रहा हूँ
0: जी। मुझे तो पता चल गया आप हंसे तो मुझे पता चल गया कि हंसमुख जी आए।
1: जी जी सही है।
0: हंसमुख जी अभी आज तो क्या है, गाने बजाने के जगह पर बैठे हैं क्या?
1: हाँ मैं थोड़ा टीवी चल रही है।
0: ओ टीवी के सामने बैठे इसलिए पूरा गाना बजाना चल रहा है ना इसलिए।
1: और क्या और क्या।
0: हंसमुख जी आज हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छा लगा। तो हंसमुख जी चलिए आपको भी पूछते हैं ना, आप भी तो पिता होंगे दो तीन बच्चों का, आपने पिछली बार बताया था बेटी है आपका, बेटा भी है?
1: हाँ है ना, मेरे छह बच्चियाँ हैं बहन जी, एक लड़का है।
0: आप रे आधा दर्जन।
1: जी जी जी जी। क्या करे, मजबूरी है, बच्चा नहीं था छह लड़की हो गई बहन जी, क्या करे।
0: हाँ बाप रे आधा दर्जन है तो अच्छा लगा फिर सुन के।
1: जी जी
0: जी जी। तो देखिए आप छह बच्चों का बाप है, अभी पिताजी का जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके भी तो पिताजी थे।
1: जी हाँ मेरे भी पिताजी थे, लेकिन बहन जी मेरे पिताजी मुझे दस साल का था जब खत्म हुआ।
0: ओ आपको छोड़कर चले गए थे। और भी आपको तो पता होंगे पिताजी का होना कितना जरूरी है ना जीवन में,
1: बहुत जरूरी होता है। पिताजी का होना बहुत जरूरी है।
0: तब तो अभी तो अभी तो आप पिता है तो छह बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, तो जिम्मेवारी कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छी जिम्मेवारी, तो जिम्मेवारी होती है, बहुत टेंशन देती है बहन जी जिम्मेवारी।
0: इसे भी आपका तो आधा दर्जन है।

0: जी
1: जी अच्छा लगा अच्छा लगा। फिर भी इतने छह बच्चों को आप नेपाल पोसकर बड़ा किया, किसी का तो शादी भी हो गए ना?
0: सबकी टोटल छह बच्ची और एक लड़का, सातों की शादी कर दी अपन।
1: ओ छह बच्ची और एक लड़का जमा करके शादी?
0: एक लड़का, छोटा है लड़का, उसकी शादी कर दी 2019 में है, और उसका एक लड़का एक लड़की है।
1: मतलब आधा दर्जन तो छह में आधा दर्जन होता है, और भी एक ही साथ है
0: जी।
1: बाप रे, मानना पड़ेगा हसमुख जी को तो
0: भी।
1: जी जी जी अच्छा लगा। फिर भी हसमुख जी खुश होकर बैठे, तो बताइए इसी खुशी में गाना कौन सा सुनाए?
0: फिल्म का नाम रहेगा बहन जी शर्मिली।
1: शर्मिली
0: जी, और गाने के बोल रहेंगे, मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई नींदिया। नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, अमर सिंह साहू जी हैं, राम नरेश जी हैं, लोकिन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं शिमला से, और त्रिपुरा से हमारे मित्र हैं आशुतोष जी, अविनाश जी, संगीता बहन जी, चित्रा सेन जी, मनोज कुमार पटेल जी, और शारदा प्रसाद जी हैं मथुरा से। इन सभी को ये गाना
1: सुनाना चाहेंगे। जी जी जी जी अच्छा लगा हसमुख जी से बात करके।
0: धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी गांतो।
1: हेलो नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
1: जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड मंडा वेले से चाय वाली बात कर रहे
0: हैं। ओ, चाय पीने का समय हो गया मेरा।
1: हाँ चाय पी लो दीदी।
0: लक्ष्मण जी हमेशा कार्यक्रम में आधा कार्यक्रम में मेरे लिए चाय लेकर आते हैं।
1: हाँ
0: जी लक्ष्मण जी, बीजी लग रहे?
1: क्या लग रहा है? जामुन खा रहे थे, जामुन लग रहा है बीजी वाले।
0: मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी को तो हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए इतना कसरत करना नहीं पड़ता है ना।
1: हाँ लगाना तो पड़ता है, मेहनत तो करना पड़ता है।
0: मेहनत तो करना पड़ता है मगर लग जाता है जल्दी आपका फोन।
1: लग जाता है, भगवान की कृपा है, लग जाता
0: लग जाता है। मुझे ऐसा ही लगता है, पता नहीं क्यों।
1: हाँ जब भी अच्छा होती लग जाता है।
0: जी जी, बिजनेस अच्छा चल रहा है?
1: अच्छा चल रहा है।
0: चाय का व्यापार अच्छा चल रहा है?
1: हाँ दीदी।
0: जी जी, तो बताइए इसी खुशी में गाना कौन सा सुनाए?
1: आज गाना सुना दीजिए, धड़कन पुत्र का।

0: धड़कन।
1: मुबारक होता जी तुम्हारा, सदा खुश रहो
0: जी। किस किस को मुबारक देना चाहेंगे फिर शादी का?
1: का देंगे बाजार लोदी में मांगलाई चलन पसंदीला सुवंती बदन कटारे रे सवारी हम सवारी ये सब दोस्त
0: सभी को।
1: हाँ
0: जी धन्यवाद लक्ष्मण जी, ऐसे फोन करते रहेगा कार्यक्रम में।
1: ठीक है दीदी नमस्कार।

0: हेलो
1: हाँ जी
0: आकाश
1: नमस्ते।
0: मणिकांतो।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? हम योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: योगेश छांगड़े जी?
1: हाँ जी,
0: छत्तीसगढ़ से।
1: हाँ जी
0: जी योगेश जी, तो बहुत दिनों बाद कार्यक्रम में प्रवेश हो रहे।
1: हाँ जी, सबको मौका मिलते रहता है तो अच्छा लगता है।
0: जी जी योगेश जी, आपका आप भी शादीशुदा है कि अब बच्चे
1: हाँ जी
0: होंगे?
1: हाँ जी हाँ
0: जी
1: जी
0: कितने बच्चे?
1: मैरिड हैं, दो बच्चे।
0: दो बच्चे हैं। नहीं, मैं यही पूछ रही थी ना कार्यक्रम में कि अभी अभी फादर्स डे मनाया सब लोग ने,
1: हाँ जी
0: तो हमारे जीवन में पिता का होना कितना जरूरी है, तो पिता को क्या कहना चाहेंगे आप? आपका पिताजी है कि नहीं अभी?
1: है जी।
0: है तो, अरे वो भी कार्यक्रम सुन रहे, तो बताइए उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या?
1: अब ये तो ऐसा है, जो माँ बाप का साया जो होता है, स्पेशली जैसे अभी फादर्स डे मनाए हैं, तो उनके मतलब कदमों पे चल कर कह सकते हैं कि हम जीवन को जीना सीखते हैं, जीवन में आगे बढ़ना सीखते हैं, और उनके जो अनुभव से हम सीखते हैं वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा काम आता है।
0: सबसे ज्यादा काम आता है। हाँ, पढ़ाई तो एक तरफ है, मगर जो
1: जी
0: माँ बाप
1: जी
0: उन लोग का अनुभव से सिखाते हैं वो और भी
1: जी
0: बहुत बड़ी बात है।
1: जी जी
0: जी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात जी। योगेश जी ठीक है ना सब?
1: हाँ जी एकदम ठीक है।
0: तो बताइए गाना कौन सा सुनाया?
1: तो वो प्यारा संगीत अगर फरमाइश नहीं हुआ होगा तो सुनवा देंगे। वो एक गीत है ना, पापा मेरे पापा, चंदा ने पूछा
0: चंदा
1: तारों
0: ने
1: से।
0: पूछा तारों से। पिताजी सुन रहे तो बहुत खुश हो जाएंगे।
1: हाँ जी सुनाएंगे उनको प्रोग्राम।
0: जी जी जी तो स्पेशली आपके पापा को ही लिए होंगे ये गीत तो।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी धन्यवाद योगी जी, ऐसे फोन करते रहेगा कार्यक्रम में और ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताते रहेगा।
1: जी शुक्रिया।
0: जी आपके पापा के लिए सुनाते हैं ये गीत, चंदा ने पूछा तारों से,
1: तारों से
0: तारों
1: तारों
0: ने

0: हेलो आकाशवाणी कांत।
1: हेलो नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी हम धेमाजी आसाम जुनाई मिसा के सपोर्ट से बिमल बसुमतारी बोल रहा हूँ मैम।
0: ओ बिमल जी।
1: जी मैम,
0: बिमल बसुमतारी जी भी हमारे कार्यक्रम हेलो श्रोता के एक परिवार जैसे बन गए।
1: जी मैम, सुन के अच्छा लगता हो, फोन भी करते रहता हो टाइम मिलने से।
0: जी जी, आपका फोन लगता भी रहता है हमेशा।
1: जी जी मैम,
0: इतना कसरत करना नहीं पड़ता है आपको।
1: जी जी जी
0: जी, बिमल बसुमतारी जी कैसा है वहाँ का माहौल अभी, मतलब वहाँ का वेदर?
1: जी मैम, अभी तो आज तो बारिश नहीं हुआ है। आप लोग का उधर कैसे है मैम?
0: यहाँ पे ऐसा ही धूप निकलता है कभी तो कभी जी, जी। बारिश हो जाता है अचानक से, कभी बादल छा जाता है, इसलिए इसीलिए अच्छा ही चल रहा है फिर भी।
1: जी जी मैम जी, को आज गाना सुनना था मैम, दिल वाले का गाना सुनाने से हो जाएगा। ये कितनी हसीन चेहरा,
0: कितना हसीन चेहरा।
1: जी जी, ये गाना हम मेरा दोस्त लोग के लिए दिल करना चाहता हूँ मैम।
0: मुझे भी लगता है आपका भी चेहरा तो बहुत हसीन है, हंसते रहते ना
1: अपना चेहरा के लिए मैम, उतरा पूर्ति से रहने से अच्छा रहता है ना,
0: हसीन चेहरा ही जैसे लग रहा है आपका।
1: जी जी जी, ऐसे रहना चाहिए मैम।
0: जी जी जी
1: जी,
0: दोस्तों के लिए ये गाना सुनाना चाहेंगे आप?
1: जी जी, हम दोस्त के लिए तरह दिल करना चाहते हो। हम लोग का है अमोल बसुमतारी है, हाइकोन मुंडा, रमेश पात्र, रमेश प्रजापति, राकेश, धरमवीर, गोल्डे, शिवा लोहार, पूरण वर्मा, बिनु गोगोई, अजित कुमार शर्मा, संध्या रानी गोगोई, हम लोग का बहुत छोटा है मैम, नाम बोलने से बहुत लंबा हो जाता है।
0: सबके लिए सुनाना चाहेंगे बिमल बसुमतारी जी के तरफ से।
1: जी मैम,
0: धन्यवाद।

0: हेलो आकाश विनिगांतो।
1: हेलो मैम, राधे राधे।
0: राधे राधे
1: मैम, मैं परिधि राजपूत बोल रही हूँ।
0: क्या बताया
1: मेरा सीरियल भोपाल से।
0: परिधि राजपूत जी जी जी, हमारे कार्यक्रम में परिधि जी तो आप पहली बार कॉल कर रहे हैं ना?
1: हाँ मैम, पहली बार कॉल कर रहा
0: है। जी जी जी, आपकी आवाज़ सुनकर तो मुझे पूनम जी का याद आ गई। पूनम जी भी ऐसे प्यारी प्यारी आवाज में बात करती है ना, मैं तो सोची थी पहले पूनम जी आए हमारे कार्यक्रम में।
1: अच्छा मैम,
0: आपकी भी आवाज बहुत प्यारी है। परिधि जी कैसी है?
1: मैं बहुत बड़ी हूँ। और मैम आप कैसी हूँ?
0: जी मैं ठीक हूँ। तो करती क्या है आप?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ, 7th क्लास में हूँ।
0: 7th क्लास में? अरे आप तो बहुत छोटी है, मतलब हमारे कार्यक्रम हेलो श्रोता में अब तक के सबसे छोटी कॉलर्स ये
1: हाँ
0: बोल
1: मैम।
0: सकते हैं। परिधि जी अच्छा लगा आपने हमारे कार्यक्रम में कॉल किया, तो ऐसे ही हर एक बुधवार को हमारे कार्यक्रम में कॉल करते रहेगा।
1: ओके मैम,
0: जी
1: करती
0: परिधि जी, आप तो एक स्टूडेंट है यहाँ, तो अभी अभी आपसे भी पूछना चाहेंगे ये सवाल। अभी अभी फादर्स डे मनाया था सब लोग ने,
1: हाँ
0: पूरा
1: मैम, फादर ही देखा।
0: सोशल मीडिया में भी दिखा था, तो पूरा फोटो भी डाल रहे थे सब लोग। तो आपको पूछना
1: हाँ
0: चाहेंगे कि फादर्स का क्या महत्व है जीवन में, और अपने फादर्स को क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं मेरे फादर से बोलना चाहूंगी कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे फादर बहुत अच्छे हैं। हाँ मैम।
0: जी जी जी, तो फादर सुन रहे होंगे तो फिर खुश हो जाएंगे।
1: हाँ मैम, मैं बिल्कुल।
0: जी जी
1: मैम
0: अच्छा,
1: मेरे मम्मी पापा का नाम भी लेना चाहूंगी।
0: जरूर जरूर।
1: केसरी सिंह राजपूत और श्रीमती रचना राजपूत।
0: केसरी सिंह राजपूत जी के आप बेटी है?
1: हाँ मैम बिल्कुल।
0: जी, उन्होंने भी अभी अभी कॉल किए थे थोड़ी देर पहले।
1: हाँ
0: तो
1: मैम,
0: बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आज कार्यक्रम में?
1: शंकर भगवान का कोई सा भी सुना देना।
0: भगवान का?
1: हाँ मैम।
0: धन्यवाद, तो ऐसे फोन करते रहेगा परिधि जी।
1: ओके मैम,
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम।

0: श्रोताहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम स्वर संसार। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार समय रात्रिको 8:45 हुनै लागेको छ। अबको केही क्षणमा यहाँहरूले क्रमशः हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा राष्ट्रिय समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is really our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
4: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
5: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
1: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरू नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरूपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
6: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
7: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजागी स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
8: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरि और कवरत्ति दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लक्ष्य में INS कवरत्ति पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
9: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रूपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Çakçaka ve Şevki.
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
3: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
2: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
3: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
2: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की वो किस तरह से, हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
3: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
2: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल, तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
3: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्ट्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ए मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा।
2: जी जी।
3: और वो नित्य नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन एआई से रिलेटेड और इस प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन छह एंट्रीज में छह जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
2: जी, आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांव से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं, तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
3: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही

0: का आवेदन करेंगे। तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें यह भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
1: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
0: जी
1: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
0: जी, जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
1: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा न हो कि हम किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक न हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं और उन बच्चों को, वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हो तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहां पे ठहरने और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
0: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार है, अभिभावक है या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जिससे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
1: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हो, आसपास में हो, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं

0: समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें, ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आएं, ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपने कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरू, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहां से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूं
1: जी,
2: और मैं पैरा एथलीट हूं, शॉर्टफुट जैवलिन करती हूं। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है
1: जी।
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत लोग कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हमको बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12 तक
1: जी।
2: फिर एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। उसमें मेरा डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉटपुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी देते हैं। वैसे मैं शॉटपुट जावलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ, इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, और ऐसे मेरे पास अभी तक 19 मेडल्स है, जिसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ आगे।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ, जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा सोचती थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है, उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा
1: जी। बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया, साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

0: कार का सम्मान मिला और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही है। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
1: नमस्कार सर। थैंक यू सर।
0: जी तो बताएं अपने बारे में। आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है?
1: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, so that's why I work on these stuff and yeah I want to work further on it, making more sustainable products and whatever I can do.
0: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिके, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
1: Right now, I will be completely honest. I don't know about startups and all, but as of today, what I'm trying to focus on is to come up with the most sustainable solutions to all these societal problems. And if future I get the chance to implement them in real life, definitely I am very eager to do that. But right now, I am just focusing on building the solutions. And as of now, I am trying to focus on my studies also as I am a 10th grader this year.
0: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
1: It was something that I never dreamt of and even today, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर and I don't know how to explain it, to be honest.
0: Thank you so much, आयशी। आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस अपने इनोवेशन के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सर।
0: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर हैं और एक केयर गिवर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
2: तो ये मौका मेरे लिए बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पर, बहुत मुश्किल था लाइफ में रहना कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसे रह जाऊंगा। बहुत मुश्किल, रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहां पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहां के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, एक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं कि हाँ चलो बहुत छोटा है और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मैं फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर फ्रॉम हिम कि हाँ यू कैन डू, वाई यहाँ सर्वाइव तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था, इसलिए मैंने काफी इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा। और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना, हेल्प आउट करके, मतलब सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी नई हील्स टूडे की, वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का नॉमिनेशन हो जाता सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे मिस्टर ललित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया। काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
2: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए उनका, साथ ही अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ जितनी मेरे से हो सकेगी, मतलब सेल्फ होके उन्हें हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
0: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
3: सर आपको बहुत धन्यवाद।
0: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
3: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं तबला को मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री प्रवीण कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
0: बिल्कुल,
3: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ, तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ, तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से, तभी से मेरा जर्नी ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत, मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत जी, का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा
0: जी। और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
3: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
0: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
3: थैंक यू सर।
0: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक एआई पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है, तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इस इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने एआई के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
4: मेरा जो AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
0: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
4: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूं जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
0: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए, धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
6: चर्चा का विषय है।